एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया क्यों दिल है तुम पे दीवाना। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, वो एक लाइफ और है मेरे पास, तो ये दर्शन इनका अलका याग्निक जी का, बस ये प्यारा लाइफ सुनिए, इस तरह से आ रहा है।

योर लाइफ रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाए फॉन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम में दर्शन इन का अलका याग्निक जी का वर्ल्ड फोरम थिएटर है। उन दिनों कांग्रेस खबाओ नाम था। आप चून है फॉन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तो क्या ख्याल है, ये फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे। कौन नहीं देखा हुआ ये फिल्म, हरियाली और रास्ता 1962 शंकर जय किशन के साज पर।

हरियाली और रास्ता, ये शानदार गीत आपको सुनाए हैं। टाइटल सॉन्ग पेश किया गया ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो निकितिन ट्विंस का ये फिल्म में शंकर जयकिशन के साथ पर लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, ये रोमांटिक सॉन्ग, क्या ख्याल है?

रोका कई बार मेरे दिल के अपने दिल की पसंद को, और ये शानदार गीत चला फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। या क्या बात है, ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब और आशा जी नेगेटिव फाइफ सस्तकोनी से 65 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और है ये

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत। चलिए एक गीत हम आप प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल? हाँ, इस तरह से सुमन कल्याणपुर है।

हाँ लता जी आपको सुनाए हैं, जी नहीं सॉरी, सुमन कल्याणपुर, सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए हैं चित्रगुप्त के साथ परनी के 3:25 तक का ये गीत। चलिए हम आपको सुनाते हैं, क्या ख्याल है ये।

काल छड़ी मैदान खड़ी फिल्म जानवर निकलती फैफ सस्त शंकर जय किशन के साज पर है। तो लीजिए अब क्या खला ख्याल है अगर जमाएं ये चला दूं आपके लिए, आप भी हैं और मैं भी हूँ।

दिल पुकारे आरे आरे लता जी और रफ़ी साहब एस दे बर्मन के साथ पर फिल्म जुअल थीफ्स में से निकाल कर हम पेश किए आप सभी श्रोताओं के लिए। एवरग्रीन किशोर कुमार है।

रिमझिम गिरे सावन, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की और फिल्म मंजिल में से निकाल कर ये गीत चला फान हिंदुस्तानी रादी पर। आप चुने जो लोग चुन के इमीटर पर आपका हृदय से स्वागत है, आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं क्या ख्याल है मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ,

मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये गीत, इंडिवर की लिखी हुई एक शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की आप सभी सुनने वालों श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, वो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं, मन्ना दे जी इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साज पर। सेमी क्लासिकल है।

छम छम बाजे रे पहेलिया, फिल्म जाने अनजाने में से निकाले शंकर जय किशन के साज पर नई गिनती एन सीफन तक का ये गीत। मुझे याद है जब मैं अभी सूरनाम में था तो लोग आए हैं, जब मैं काम पर था तो एक आदमी ने कहा, गंगा एक गीत एक फिल्म चल रहा है जैन एंड जैन, ये कैसा होगा? तो मुझे पता चल गया ये जैन एंड जैन नहीं है लेकिन जाने अनजाने हैं। शंकर जय किशन के साथ पे मन्ना दे जी आपको सुनाइए ये शानदार गीत। फान हिंदुस्तानी रेडियो का क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? चलो फॉर चेंजिंग। थोड़ी सी बदलाव

राम लक्ष्मण के साज पर यह शानदार गीत पेश हुआ। लता जी आपको सुने फिल्म हम आपके हैं कौन में से निकाल के हमने पेश की ये कार्यक्रम में। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत, आपका स्वागत करते हुए चलिए क्या ख्याल है अगर ये हो जाए। माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

अरे वाह क्या बात है, मौसम सुहाना है दूर कहीं चल। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और गीता जी आपको सुनाए, गीता रॉय जी, ये दोनों मिलके ये शानदार दुएत पेश हुआ फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। और फिल्म है, हाँ सोचिए फिल्म डॉक्टर शैतान। जी हाँ, मैंने तो ये फिल्म नहीं देखे हैं, गाना सिर्फ सुने हैं लेकिन डॉक्टर शैतान नहीं देखे हैं। बहरहाल कार्यक्रम में पेश करते हुए क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, बस बस आप सीधे बैठ जाइए और सुनिए।

हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने चलाए। उम्मीद है आप सबको पसंद आ रहा होगा, तो अगर जब पसंद आ रहा होगा तो अभी पता चल जाएगा, शायद आप तार कर देंगे या ऐप भेज देंगे। बहरहाल कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनाते हैं, क्या ख्याल है ये गीत।

ये चटक बटक गीत हमने पेश किए हैं पौन इंसानी राजयोग के कार्यक्रम में, शाम के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो है बस, इसमें भी थोड़ी बदलाव लाएंगे ना, तो लीजिए ये है इस तरह से आ रहा।

वाह क्या बात है। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा, फिल्म दरिंदा में से निकाले हैं। ये गीत तो उन दिनों बहुत पॉपुलर था, उस ज़माने का समय था जब फिदियों पर फिल्म निकला था, यहाँ तक मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा फिल्म दरिंदा निकला, और बहुत लोगों ने ये फिल्म देखे हैं अपने घर पर, फिर या एस पर या बेटामक्स पर या फिल्म पर। बहरहाल ये शानदार गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि हम आपको सुनाने वाले हैं इसके बाद

तेरा नैना जरा बेईमान से रफी साहेब आपको सुनाए शानदार गीत फिरकी वाली। यानी आपको पता है सूरीनाम देश में जब हम थे तो एक आदमी गुजरता था हमेशा मूलन मूलन बेचता था करीबन 2 पैसे का या 3 पैसे का, मैं भूल गया। बहरहाल रंग बिरंग मूलन, वही फिरकी वाली जो विंद मूलन लेकर वो घूमता था, वही फिरकी वाली की बात जिक्र हो रहा है यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए क्या ख्याल है अगर लता जी आपको ये गीत सुनाएं।

लता जी अपनी आवाज में आपको सुनाए जीवन की दो राहे पे खड़े सोचते हैं हम। आप ये गीत सुनकर थोड़ा सा भावुक हो गए होंगे, यानी इमोशनल हो गए होंगे। बहरहाल तो लीजिए, आपको थोड़ा हम खुश कर देते हैं इस तरह से।

वाह क्या बात है, बेचारी अपनी प्रेम कहानियाँ भी नहीं सुना सकी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर मेरा गांव मेरा देश में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। आप सबका हृदय से स्वागत है, जो लोग चुन रही इन मीटर पर आप सबका हृदय से स्वागत किया जा रहा है।

नमस्तशे नमस्तशे नमस्तशे नमो नमः। हरिओम एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में। कैसे रह लो आप लोग? फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को सत श्री अकाल, हरिओम हरि बोल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्ण आदित्य भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रात्रि का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। गीत और गजल और तीस बोल संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ यार, यही आशा उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। जहाँ पर भी हो जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ रात्रि प्रकट हो। मैं थील फील लॉइस्टर प्लेजीर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आपके सेवा और खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चून है द प्लस रेडियो पर नतुल्य उक्त बलैस्त्र फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन एफएम चैनल पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यार, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में 23 कांतोर यूरन ऑप 07-365-2247-47। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ये काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरखीत है उनसे क्वालिटी इस टू खरांसी एना त्यूलिक ना त्यूलिक ना त्यूलिक फूटी से आउट एट लेकर दर बाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम सुना जो खास करके छोटा भाई यारों का यार जिगरी दोस्त महान अनाउंसर साथी द वन एंड ओनली करण सिंह जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया। जिस तौर तरीके से भाई करण जी हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सेवा करते आया है, ये उम्मीद है फुल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई करण जी। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे एक खुशी का दिन एक जश्न मनाया जा रहा है, शायद आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं, विवाह संस्कार के तैयारियां में भी हो शायद लगे हो आप, जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर पिंती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होती जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियां पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है और परमपिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को हमेशा की तरह सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। ही फील्स डायरेक्टर मैथ्यू सिटीवाद से। जो बीमार लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए, जिंदगी के मजे जरूर रोजाना लेते रहना और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी खूब जोर तोड़ से सुनते रहना। फन हार्ट बीट शॉप। आप कामयाब हुए हो तो तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां हमारे फुल टीम की तरफ से, और अगर नहीं हुए हो बंधु तो चिंता के कोई बात नहीं है ना, दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ फुर्तराव जोर तोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो देखना कामयाबी कैसे दौड़ दौड़ कर जल्द से जल्द आकर आपके कदमों को चूमेंगे। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो, नोइट ऑफ फैबो तो खिलेट। देश में प्रवेश हुए हो तो
Full Team की तरफ से सुस्वागतम आपको, फैन वैकेंसी एंड नेचुरली ब्लाइव लाइस्टर नार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, यू गोना लाइक इट। देश की छोड़ के देश आप विदेश यात्रा पे जा रहे हो तो फुल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ यात्रा। फैन वैकेंसी नतीजा तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को, फैन वैकेंसी एड्रेस इंटरनेट के लहरों द्वारा, द प्रेस रेडियो के लहरों द्वारा। तो आप भी सुनिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को अपने टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप, सो बेंट यू फन अलस ऑफ द होक्ट फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन, एंड दैट इज नेचुरली द वन एंड ओनली देन हाँ शेर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करता आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। ऐड फिल्म ललकार 1927 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हमेशा की तरह सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते रहते हैं यारों की हैव टू नाश्ता ऑल लीफ, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारों। खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे, अति सुंदर प्रोग्राम लेकर आया हूँ। खास करके अगर आप पुराने नगमे पसंद करते हैं तो पुराने ज़माने के महान संगीतकार बेताज बादशाह के नाम से भी जाने माने जाते थे महान संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी के कुछ नगमे लेकर आया हूँ। और 10 से तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक आप सुनेंगे सिर्फ नगमे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, कुछ शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि प्रकट हो। घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। रवि साहब आइए और सुनाइए।

galo muskuralo mehfilis sajalo padmashri mohammad rafi sahab ji ke madhur awaz mein hamesha ki tarah program ka shuruaat tumhare priy shrotaon vaada ke mutabik ek hi dam lekar chalte hain aap sabhi ko karyakram ki taraf aur wo hai ek ati sundar program aaj ka is haseen ratri jo aap sabhi ke naam hai लेकर आ रहे हैं मशहूर गाने वाली हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के मधुर आवाज में फ्रॉम द पुराना मूवी बैंक मैनेजर मेरा दिल भर हजारों में एक है मिल के सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम मैस्ट्रो मदन मोहन जी के साज पर

Beautiful song, wonderful song by Queen of Rock and Roll, Asha Bhosleji, from the movie Bank Manager. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार लाते हैं आप श्रोताओं की सेवा में मशहूर गाने वाली भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में. आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी मिनिस्टर 1959 मदन मोहन के साज पर राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, उन आंखों में नींद कहां. लता जी

beautiful song by Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji, from the movie Minister 1959, Madan Mohan ji ke saaj aur sangeet par, aur iti sundar bayan ko likha hai Rajinder Krishan ji ne. एक अति सुंदर बयान रख चुका हूं आप श्रोताओं की सेवा में और सुनाने को जा रहे हैं इस बार द किंग ऑफ मेलोडी सुरों का बादशाह रफी साहब जी. क्या आवाज है, क्या सजाया है ये नगमा को मदन साहब जी ने इतना फीलिंग से. महान लेखक राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान की मेरा पैगाम मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं. वन ऑफ माई फेवरेट रफी साहब जी का आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम मिलकर सुनते हैं.

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना दिया आप सभी को, सुरो का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। इट्स अ अनरिलीज सॉन्ग। तो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं यारो, कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने आज़ादी, छुटकारा, फ्रीहिट के बारे में इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखकर चले गए हैं यारो। कुछ जीवित है और कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं, और ये इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये अशोमील लेकर के इन बातों से कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे, तो जरा गौर फरमाएं। कहकर गया है श्री योहान कास्पर लाफातेर, है वाज एन स्विट्जरलैंड थियोलॉग एंड मिस्टिकस, लीव्ड फ्रॉम 1741 टू 1801। और योहान कास्पर लाफातेर ने कहा है आजादी के बारे में यारों की, द फ्रीहिट ओम टू बेड्रेगन, te onderdrukken, te roven, te bedriegen, uit te zuigen, de moorden, dat is de vrijheid van de duivel. Een hele goeie hoor. Agemekaiser Dietrich Bonhoeffer, hij was een Duits kerkleider en verzetsstrijder, leefde van 1906 tot 1945. और डिट्रिख बोनहोफर ने कहा है फ्रीहिट आजादी के बारे में यारों की, गहोरसामहिट हैंडल्ड सोंडर टू फ्रागन, फ्रीहिट फ्रागत नार द बेटेकनिस। आगे में कही है श्री रोसा लुक्सेमबर्ग जी ने, ड्यूट्स मार्क्सिस्टिस पॉलिटिका एंड फिलोसोफ, लीव्ड वन 1871 टू 1919। रोसा लुक्सेमबर्ग ने कही है आजादी के बारे में यारों की, फ्रीहिट इज द फ्रीहिट फॉर द अंडर्स डेंकेंडन। नोग इंटे वन रोसा लुक्सेमबर्ग, ड्यूट्स मार्क्सिस्टिस पॉलिटिका एंड फिलोसोफ, 1871-1919। रोसा लुक्सेमबर्ग ने एक और कही है यारों, और वो कही है कि फ्रीहिट फॉर द अनहांगर्स फन द रेगेरिंग, स्लेक्स फॉर द लीडन फन द पार्टे, अल सेन से नोग सो टालरेक, इस गीन फ्रीहिट। फ्रीहिट बेटेकेंट इमर फ्रीहिट फॉर अंडर्स डेंकेंडन। आगे में कहा है श्री मैशियावेली, है वाज एन फ्लोरेंटाइन्स स्टाट्स फिलोसोफ, इटालियान दुस, leefde van 1469 tot 1527. Machiavelli nekahai azadi ke bare me yaroki, als iemand de baas wordt van een stad die gewend is in vrijheid te leven en hij haar niet vernietigt, moet hij erop rekenen door haar vernietigd te worden. Hugo de Groot, hij was een Nederlands rechtsgeleerde en schrijver, leefde van 1583 tot 1645. Al Hugo de Groot nek hahei azadi ke bare me yaroki, vrijheid is de macht die we hebben over onszelf. Broeder Roger van Taizee, Zwitsers theoloog en oprichter van de Taizee gemeenschap, leefde van 1915 tot 2005. O broeder Roger van Taizen, ik ha hei azadi ke bare me aroki, wat betekent vrijheid als het zelfzuchtig gebruik ervan de vrijheid van anderen aantast? Mahaguru Sri Buddha, hij was een spirituele leider, geboren als Siddhart Gautama, liefde van circa 370 voor Christus tot 450 voor Christus. Om Mahagyani Sri Buddha ne kaha hai azadi chutkara ke bare mein aro ki,
ook een hele goeie hoor. Zoals de grote oceaan slechts één smaak heeft, die van zout, zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak, die van vrijheid. Eentje om in te lijsten hoor. Dag Hammarskjöld. Hij was een Zweeds diplomaat en van 1953 tot 1961 was hij VN-secretaris-generaal en leefde van 1905 tot 1961. O, dag Hammarskjöld, Nikahai Azadike Barmiaroki. Vrijheid van angst zou een samenvatting van de hele filosofie van de mensenrechten kunnen zijn. En de laatste van vanavond, Kahe Malcolm de Chazal. Hij was een Mauritiaans, Franstalig schrijver en schilder. Leefde van 1902 tot 1981. O Malcolm de Chazal, Nikahe Azadike Barme Yaroki. De vrijheid om zichzelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen. Ja, wat. Dan maar een beetje retour. Heb je ook iets gehouden, udaharan suna. Jo azadi, chutkara, vrijheid ke bare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over vrijheid gaan. Ye asha umid lekar in baaton ko main aap sabhi ko sunaya ki kuch na kuch seekh to hamesha in baaton se hum log seekhenge. To program ko aage badhate hain, ek ati sundar bayan aap sunenge. Kismat jo pilaye humko. Ay the film Ladka Ladki, Queen of Rock and Roll, once again Asha Bhosle ji, Madan Mohan ji ke saaj par.

Beautiful song Eti Sundar Bayan ai di film Lerka Lerki Madan Mohon Jike Saj Persona Diap Sibiko Queen of Rock and Roll Asha Bosley Ji. Ikati Sundar Mazidar Aap Sunenge Yaro Aur Is Bar Late Hai Program Me म्यूजिक डायरेक्टर मशहूर गाने वाली द ग्रेट उषा खन्ना जी के मधुर आवाज में आई फिल्म लड़का लड़की 1966 कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन वो आ रहे हैं।

कमल हो या कमला, विमल हो या

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटोलिक उक्त ब्लॉज त्रिफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर वर्ल्ड वाइड। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम। नैतिक वर्क्स बॉयज एंड बदंग, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो जरूर अपने व्यापारी के बारे में, एक ऑर्गामान हो ऑर्गावुमन हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से ऐलान जरूर कराना यारो, किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी बेल तेनस कंतोर और अपने उसी में तक दरिफायंस इस तक 2026 सीवनें फिर तक। जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी न्यूज़ पर आप तार करें। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना। इट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंड हमारे फुल टीम की तरफ से तह दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के तरफ। कुछ नगमे रह गया है फ्रॉम द मूवी तर्राना सुनाने के, तो एक ही दम एक बार फिर भारत रत्न लता जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे मुझे रूठ गए मेरा सांवरिया, अनिल दा के साँच पर।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे रूठ गयो मेरा सांवरिया, फ्रॉम द मूवी तराना 1951, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अनिल दा के साइज पर। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, और एक और अति सुंदर बयान है ओम किपफेल फॉर्म टू क्रेग द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी, एक बार फिर सुनने को जा रहे हैं आप सभी को, एक मैं हूं एक मेरी, ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट तलत जी का स्पेशल।

एक मेरी द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म तराना कंपोज बाय अनिल विश्वास जी। अब आप सुनेंगे पार्ट टू फ्रॉम द सॉन्ग मोसे रूट गयो मोरा सांवरिया। एक बार फिर लता जी द सेट वर्जन।

की सुंदर बयान मुझसे रूठ गई मोर सांवरिया द सेट फैशन भाग त्वे क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अनिल विश्वास की साज पर फ्रॉम द मूवी तराना। तुम्हारी प्रिय प्रिय श्रोताओं कुछ आखिरी शेर्स हो जाए हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है दोस्ती के नाम पे यार की दोस्ती का पहला पैगाम आपके नाम, दोस्ती का पहला पैगाम आपके नाम, जिंदगी की आखिरी सांस भी आपके नाम, रहे सलामत ये दोस्ती अपनी, रहे हमेशा सलामत ये दोस्ती अपनी, इसे सलामत रखना आपका काम है। जिंदगी की हर अदा में याद रखना, दिल की हर सदा में याद रखना, यही तोहफा बहुत है मेरे लिए आपका, यही तोहफा मेरे लिए बहुत है आपका, खुलूस दिल से हर दुआ में याद रखना। दोस्ती इंसान की जरूरत है, दिलों पे दोस्ती की हुकूमत है, आपके प्यार की वजह से जिंदगी है, आपकी प्यार की वजह से जिंदगी है, वरना खुदा को भी हमारी जरूरत है। आंखें आपकी हो पर आंसू मेरे, जिंदगी आपकी हो पर सांसें मेरी, दिल आपका हो पर धड़कन मेरी, जिंदगी की आखिरी मोड़ पर दुआ होगी, यही है दुआ मेरी। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, दीप तो आंधी में भी जगमगाते हैं, दीप तो आंधी में भी जगमगाते हैं, फूल तो कांटों में भी महकता करते हैं, कितने नसीब वाले होते हैं वो, कितने नसीब वाले होते हैं वो, जिन्हें आप जैसे दोस्त मिला करते हैं, क्या बात है, जियो यारो। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और एक दर्द भरी बयान है लता जी के मधुर आवाज़ में अनिल दा के साज पर की वापस ले ले ये जवानी।

दर्द भरा बयान वापस ले ले ये जवानी, फ्रॉम द मूवी तर्राना, मधुबाला जी के ऊपर ये अति सुंदर बयान पिक्चराइज किया गया है अनिल दा की सांच पर लता जी के मधुर आवाज में। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, फ्रॉम द मूवी तर्राना एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और एक बार फिर महान गाने वाली, मेरे ख्याल से भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी एक ऐसा गाने वाली थी जो शायद भारत देश में कभी नहीं पैदा होगी। वो दिन कहाँ गए बता ऐ द फिल्म तराना, एक बार फिर लता जी अनिल दा के सांच पर uit 1951, een hele jonge stem van onze Nightingale.

Ja, but hey, what a voice, Queen of Melody, लता मंगेशकर जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, और ये भी साथ ही साथ आखिरी बयान था इस फिल्म तराना अनिल विश्वास जी के मधुर संगीत पर। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, सभी गाने आप सुन चुके फिल्म तराना का। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन इग्न फेफ तक, हलचल। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुसन द ग्रेट नरगिस जी के साथ, और साथ ही साथ उस जमाने के महान अभिनेत्री द ग्रेट सितारा जी के साथ। म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद शाफी के साज पर आप सुनेंगे सुरों का बादशाह रवि साहब और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी के मधुर आवाजों में। लागी है आग दिल में, क्या बात है वाह।

अति सुंदर बयान है श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। लागी है आग दिल में, ऐड फिल्म हलचल निकली 51 मोहम्मद शाफी सज्जद हुसैन के साइज पर सुना दिया आप सभी को। भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी uit 1951, wat waren hun stemmen toen nog jong zeg. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये अशोमिल लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, आप सभी को प्रोग्राम पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूँ स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम लेकर, सरनामी संगीत, जिसमें पहला अध्याय बैठक गाना, दूसरा अध्याय कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और उसके बाद कुछ नए नए आवाजें फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन है ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है। अब हमारे बात एक से एक कोली खास आप सभी को सेवा करने वाले हैं। खास करके शुरुआत करते हैं हम लोग महान अनाउंसर साथी भाई अमित कुमार जी के साथ, उसके बाद भाई दिलीप जी, भाई पवन है भी प्रोग्राम में, तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मज़े लेते रहना। मैं आंध्र को लेखस और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ ना।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एंड नेटवर्क ऑक्टोबल सिर्फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वेरेक्स बॉयस एंड गर्ल्स एंड बदंत, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार, दुलार, प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं प्लेजर के साथ, तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें या तो अपने व्यापारी के बारे में या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में, जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। की फाइव सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बियॉन्ड ऑफ द एस्ट प्लांट्स, सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अप 07 3 6 2 6 4 तक, या तो अप 07 3 6 2 7 पर आप तार करके सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा हमेशा की तरह करते रहना है। इट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अप 07 3 6 2 7 4, या तो अप 07 3 6 2 7 पर। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं प्रोग्राम के ओर। सभी नगमे फ्रॉम द मूवी दुनिया ने फिरन तख तख को आप सुन चुके, तो अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1994 तख तक में, फिल्म मशाल। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है द ग्रेट एक्टर अनिल कपूर जी के साथ, मलकाए हुस्न वहीदा रहमान जी और द ब्यूटीफुल रति अग्निहोत्री जी के साथ। संगीतकार है लता जी के भाई द ग्रेट हृदयनाथ मंगेशकर जी, और लेखक है गाने का द ग्रेट जावेद अख्तार जी। तो उसी फिल्म में से अब आप नगमे सुनेंगे, मुझे तुम याद करना, फ्रॉम द मूवी मशाल 1984। हृदयनाथ मंगेशकर के साथ पर जावेद अख्तर के अल्फाजे और आवाजें है संगीतकारों का बादशाह और शहिनशाह द ग्रेट ग्रेट ग्रेट किशोरदा और भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी मिलके सुनाते हैं मुझे तुम याद करना।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुझे तुम याद करना और मुझे याद आना भी तुम। एड फिल्म मशाल 1984, महान संगीतकार द ब्रदर ऑफ लता जी हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ पर जावेद अख्तार का ये अल्फाज है। और हसीनों का पुजारी किशोरदा और लता जी का कॉम्बिनेशन तो आप सुने ना कितने मधुर था। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं फ्रॉम द सेम मूवी मशाल, और सभी गाने तो मैं चलाता हूँ, सीजन नहीं है होली का, लेकिन इस फिल्म में भी एक होली सॉन्ग आया था तो मिल के सुनते हैं होली आई रे। एक बार फिर किशोरदा और लता जी के आवाज़ में कोरस के साथ।

great holy song from the movie Mashal, Holy Aire, किशोर कुमार और लता जी के मधुर आवाज़ों में कोरस के साथ, संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर के साज पर जावेद अख्तर जी के लिखा हुआ अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सामने पेश किया। तो यारो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारो, ये दोस्ती चिराग है इसे जलाए रखना, ये दोस्ती गुल है इसे खिलाए रखना, हम रहे ना रहे इस जहां में, हम रहे ना रहे इस जहां में, बस हमारी याद दिल में बसाए रखना। क्या बात है वाह। ऐ दोस्त तेरे दोस्ती के लिए दुनिया छोड़ देंगे हम, तेरी तरफ आए हर तूफान को मोड़ देंगे हम, लेकिन तूने जो साथ छोड़ा हमारा, लेकिन तूने जो साथ छोड़ा हमारा, कसम से तेरे बिना मर जाएंगे हम। हर कोई प्यार के लिए तड़पता है, हर कोई तो प्यार के लिए तड़पता है, हर कोई प्यार के लिए भी रोता है। दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं यारो, दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं है यारो, दोस्तों की वफा से डरते हैं हम। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, इतना ना याद आया करो कि रात भर सो ना सकूं, इतना तुम याद ना आया करो कि रात भर सो ना सकूं, सुबह को सुर्ख आंखों का शबाब पूछते हैं लोग। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। अगला बयान फ्रॉम द मूवी मशाल देखती फिर तख्त, फुटपाथ के हैं हम कभी कभी। कंपोज बाय हृदयनाथ मंगेशकर, जावेद अख्तार के अल्फाजे, और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक मज़ेदार संगीतकार जोड़ी, सुरेश वाटकर और अनूप जलोटा जी मिलके सुनाते हैं कि फुटपाथों के हम।

0: als je de lekkerste spinazie van Nederland verbouwt.
1: Ja man, ja, Bart hey, from the movie Mashal ki foot paato ke hum. Beautiful song, mazedar sangeetkar jodi, Suresh Vatkarao, Anup Jalota chorus ke saath milke yati sundar bayan ko pesh kiya. Hriday Nath Mangeshkar ke saach par aur Javed Akhtar ke alfaze. अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी मशाल और इस बार महान फनकार हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जिस पे हमें नाज है गर्व है संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह द ग्रेट किशोर दा के मधुर आवाज में हृदय नाथ मंगेशकर जी का साज और संगीत जावेद अख्तर के अल्फाज जिंदगी आ रहा हूँ मैं

फ्रॉम द मूवी मशाल, हसीनों का पुजारी, किशोरदा के मधुर आवाज में हृदयनाथ मंगेशकर जी के साज और संगीत पर जावेद अख्तार के अल्फाजे। वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है यारो, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बयान आप सुनेंगे फिल्म मशाल, और साथ ही साथ आखिरी सॉन्ग है फिल्म मशाल का 1984 कंपोज बाय हृदयनाथ मंगेशकर जी, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को बड़ी बहन लता मंगेशकर जी। मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल शिव भजन आप श्रोताओं के सेवा में।

नमः शिवाय अति सुंदर बयान भजन एड फिल्म मशाल नेगेटिव फिर सिस्टर कंपोज बाय लता जी का भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी और अति सुंदर बयान आप सुना क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में। तो हमारे प्रिय श्रोताओं वक्त भी आ चुका है आप सभी से विदा लेने को। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों की जिस तौर तरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि आप सभी को मेरा पेश किया हुआ कार्यक्रम जरूर पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ देना दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए। हमारे बात आप सुनेंगे आज का एक हेयर हालिंग न्यूज़ का जो पेश किया गया था दौर ऑनस एयरवार्ड कोलिखा ऑनस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड जर्नलिस्ट फन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो डवन एंड ओली मास्टर रोमियो होस्ट। और उसके बाद एक से एक अनाउंसर साथ ही तैयार है आप श्रोताओं को सेवा करने के लिए। शुरुआत करेंगे अमित कुमार जी के साथ, बाद में दिलीप भाई भी आप सभी को सेवा करने वाले हैं। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना यारो। मुझे आप सभी इजाज़त दे, आप सभी को हमारे फुल टीम की तरफ से एक शुभ दिन। और हमेशा की तरह तो जाते जाते कुछ ना कुछ गुनगुना देता

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत है, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें या तो अपने व्यापारी के बारे में एक कमर्शियल बनवा कर, या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आप एक ऑर्गामान हो, ऑर्गा वुमन हो, इवेंट और खनिसात और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें फन फ्रेडाग van maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 op de volgende telefoonnummers 070-365-2047. Ja, het wapen daar krijg op 070-362-2077. Toe, job hier radio ka kaam ho, denk aan Fahon Hindustani Radio. Bent u nog geen lid van Fahon Hindustani Radio? Toe, gezar is bent u kia jara hai, kia abhi जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी साथ साथ बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें फनाफ मानदाग तथ फ्रेडाग ओप 070-365-2047 या तो आप तार करें ओप 070-362-2077 फनाफ 9 तथ 5 uur smiddags kunt u altijd bellen। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक ही दम लेकर चलते हैं, कुछ नगमे रह गया है सुनाने के लिए। ऐद फिल्म घन घर संसार 1958 एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सपनों की दौर बांधी, अशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय मास्टरो रवि शर्मा और लिखा है ये थी सुंदर बयान को मजरू सुल्तानपुरी जी ने।

0: सपनों की डोर बंधी एड फिल्म घर संसार नीति 58 अशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय रवि। एक और अति सुंदर बयान आप सुनने वाले हैं यारो, होठ गुलाबी गाल कटोरे नैना सुर मैदान, क्या बात है। घर संसार फिल्म में से अति सुंदर बयान आप सुनेंगे, कंपोज बाय रवि, अल्फाजे है मजरू सुल्तानपुरी के, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को सुर का बादशाह रफी साहब और आशा भोसले जी, मिल के सुनते हैं।
1: देखो बादशाह, ये बात है तो मैं आपको इस खुशी में पंजाबी भंगड़ा डांस दिखाता हूँ।
2: भंगड़ा? अरे बोले बादशाह तो फिर वेला करा भेज दो। चलो आज जी,
1: ऐसा
2: आज की बात है,
1: भंगड़ा देखो साडा।
2: चलो जी,

Beautiful Song uit de film Garsensa 1958. Ravi Sabar, Asha Bhosle ji ke madhur awazon mein composed by Ravi aur lekhak Majru Sultanpuri. To yaro वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारों की एक हल्के से इशारे के जरूरत होगी, दिल की कश्ती को किनारे की जरूरत होगी, हम हर उस मोड़ पर मिलेंगे आपको, हम तो हर मोड़ पर मिलेंगे आपको, जहां आपको सहारे की जरूरत होगी। क्या बात है, हर तरह की इल्जाम को सह लेते हैं, जिंदगी को यूं ही जी लेते हैं, मिला लेते हैं जिनसे हाथ दोस्ती का, मिला लेते हैं जिनसे हाथ दोस्ती का, उन हाथों से फिर जहर भी पी लेते हैं। ना करिए बोई एक हल्के से इशारे की जरूरत होगी, दिल की कश्ती को किनारे की जरूरत होगी, हम हर उस मोड़ पर मिलेंगे आपको, जहां आपको सहारे की जरूरत होगी। काफ़ी है हुस्न दिल की बहलाने के लिए, काफ़ी है हुस्न दिल को बहलाने के लिए, मोहब्बत कर लो दिल को दुखाने के लिए, चाहे परे गम से वास्ता कभी, एक दोस्त रखना हमेशा गमों को भुलाने के लिए। क्या बात, दोस्ती में जीना दोस्ती में मरना, दोस्ती में जीना दोस्ती में मरना, हिम्मत ना हो तो दोस्ती ना करना, जिंदगी नहीं हमें दोस्तों से प्यारी, जिंदगी नहीं हमें दोस्तों से प्यारी, दोस्तों के लिए है जिंदगी हमारी। क्या यार ने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया, आपने एसएमएस करना बंद किया, हमने मोबाइल चार्ज करना बंद छोड़ दिया। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, कह दो कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, कह दो कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, दोस्त बन के मेरे संग संग रहोगे, चाहे हो जाए तुमसे तुम्हारी जान भी जुदा, चाहे हो जाए तुमसे तुम्हारी जान भी जुदा, पर तुम मेरे सत्य, तुम मेरे साथ उम्र भर तो रहोगे। तो ये थे कुछ शेर्स शायरी जो मैंने अपने ही अंदाज में कोशिश किया सुनाने के लिए। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को मशहूर गाने वाली क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल अशा भोसले जी, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का संगीतकार रवि शर्मा के साथ पर की भाभी करे अपील, घर संसार निकली आख तुम फैफ तक।

ब्यूटीफुल सॉन्ग भाभी करे अपील। और भैया बने वकील, क्या बात है, घर संसार नहीं थी अक्टम फेफ तक। आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय रवि। तो मैं प्रिय श्रोता हूँ, सभी नगमे आप फिल्म घर संसार का सुन चुके। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1958, फिल्म खजांची। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है बलराज शानी जी के साथ, श्यामा और मनोरमा, हेलन और केशव मुखर्जी भी इस फिल्म में काम किए है। संगीतकार है मदन मोहन और लेखक राजेंद्र कृष्ण। तो उसी फिल्म खजांची में से कुछ नगमे आप सुनेंगे। और वक्त तो आ गया है बहुत ही करीब, तो शायद एक ही नगमा मैं सुना पाऊंगा इस फिल्म के आज के इस हसीन प्रोग्राम में। तो आने वाले दिनों में इस फिल्म के कुछ और नगमे आप सुनेंगे, लेकिन आज मैं ये सुना देता हूँ क्योंकि वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने के। लेकिन उससे पहले फ्रॉम द मूवी खजांची आशा भोसले जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे मेरी अंखियों में झूम है देखो साजन का प्यार, कॉम्पोज बाय महान संगीतकार मिस्टर M&M द ग्रेट मदन मोहन साहब।

Beautiful Song a persona ei de film Kazanchi Jorriski avea ta nicht die 58 așa bus legike mădura vasme satio aure sangeet kar madan mohanji ke saach par ye ti sundar bayan aap shrotaon ne suna तुम्हारी प्रिय साथियों वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने के। ये यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं हमारे प्रिय सुनने वालों की जिस तौतरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में आप सभी को मेरा पेश किया हुआ कार्यक्रम यही सोचता हूं कि आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूं आवाज के जरिए, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूं आप श्रोताओं के लिए, यार सुनाऊं आज।

I love you all from the bottom of my heart. और जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप ट्यून है, आप सुना संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम, और उसके बाद ओल्ड इज गोल्ड गीत और गजल नामक प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं तिक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों के सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है, लाचार है, भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि स्वस्थ में परिवर्तन आवे। जिनके घर से नया शिशु ने जन्म लिया है परिवार में, तो उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनके जन्मघाट आज जन्मदिन है, उन्हें बहुत सा बधाई भी दिया जाता है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी की ओर बढ़ने के लिए, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और हर बार की तरह इसको भाई दोहरा देता हूं, महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहे थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो मां सरस्वती को भूलना नहीं। बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले माँ सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं मेतफकांसी, तो मैं आपको हार्दिक से स्वागत करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि ये देशों में एक देश है जिसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने परिवार के साथ, पर यहां जितने भी लोग रहते हैं हॉलैंड, अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक देश जहां कितने सारे मंदिरों है, और सबसे ज्यादा वही जहां जहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी रहते कहां हैं? कहा जाता है कि तनहाक शहर, और वहां आपको मिलेंगे मंदिरों जैसे देव मंदिर खासलान में, जो हर रविवार को और होते दाखों पे लगते रहते हैं। जरूर ये कहना चाहूंगा कि दर्शन करके जाना, जो हर रविवार 2 बजे से 5 बजे तक रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम रखा जाता है। राधे कृष्ण मंदिर यानफा हो इस रात तनहाक शहर से, और यहां भी कार्यक्रम हर मंगलवार को 5 बजे से 8 बजे तक रहता है। इसी प्रकार से मंदिर सेवा धाम तनहाक शहर, राम मंदिर दनहाख, और शायद आप रोटरडम शहर में रहते हैं तो वहां भी शिव मंदिर नौसमानसरात, हर रविवार को सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, इसी प्रकार से राम मंदिर रोहतांग, नंदा देवी मंदिर, अगर आप सुतमेर के निवासी हो तो सुतमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो प्रिश्मालान में है, सुतमेर में हर मंगलवार को, और आप जा सकते हैं वहां का कार्यक्रम जो 6 बजे से 9 बजे तक होते हैं।

कहा जाता है कि अगर आप दूर शहर का निवासी हो, जैसे कि आलमीर, तो श्री विष्णु मंदिर, जो यूरोपा का और सबसे सुंदर मंदिर कहलाते हैं, लोग दुनिया के अन्य देशों में से आकर के वहां दर्शन करते हैं। आलमीर का श्री विष्णु मंदिर, जो कि हर रविवार को 2 से 6 बजे तक

इसी प्रकार से हम उनका देश में धार्मिक स्थानों भी एक दो है। कुछ ऐसा संस्थाओं भी है कि हमारे पुरखों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि एकता, एक संस्था जो 50 साल से भी ज्यादा

संस्था जैसे हिंदू परिषद नीदरलैंड, संस्था जैसे हिंदी परिषद नीदरलैंड, जो कुछ 40 साल से भी ज्यादा एक संस्था जहां पर हिंदी का आपको सिखाया गया, लिखाया गया, पढ़ने पढ़ाने एक संस्था जो गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेयर दान 12,000 सर्टिफिकेट uitgeschreven. सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं. एक देश जहां पर पार्थिव लिंगम पूजन भी किया जाता है हर गर्मी महीना में. उसी में ये मैं जोड़ देता हूं, गर्मी में जब श्रावण मास आता है तो कितने मंदिरों में श्रावण मास पूजा खूब विधि विधान से किया जाता है, जरूर उसमें भाग लेना. सुनने वालों, मैं आपके साथ जुड़ा हूं. सुबह का औखतंत भजन प्रोग्राम जहां से दनहाग मैके स्ट्रात सेस हिंदू बासस स्कूल फाउन फरेनिंग अलगमेने हिंदू अंडरवाइज की ओर से सभी बच्चों, सभी सदस्यों, सभी अंडरवाइजर्स और सभी दिरक्सी लेदके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर हम बढ़ते हैं.

इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़े होते हैं। ये सुंदर सा भजन जो हम सब चलाए गए हैं फाहुन सोल जो तनहाख मैकेन्सरात निम्रोसेस हिंदू बासस सोल फाहुन फरीनखिंग अलखमीन हिंदू अंदरवाइस की ओर से।

कहते हैं कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज अपना समय पे भी ध्यान देना। क्योंकि समय जिसे हम जानते हैं काल से, बहुत बलहारी कहलाते हैं। रुकने वाले नहीं हैं। उसे आप रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। जिसे हम कहते कि हम उसे पिछाड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता है।

हमारा अगला भजन को स्पॉन्सर करने वाले हैं लिफोर्नो मेनकंदम हुक इंदिरा गांधी वेख श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर, जिनके अगर आपको वहाँ मालूमात करना है तो भाई सुहास महावीर से जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। जिनका तार का नंबर 00590 6 6 5 8 7 7 5 8 7 7। एक सुंदर सा भजन उनके ओर से।

दोस्तों कहते हैं कि ये रिश्ते भी अजीब होते हैं। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते हैं और बिना धोखा से खत्म नहीं होते हैं। विश्वास है

जरूर ध्यान देना, अगर कोई विश्वास आप पे रखते हैं। नीदरलैंड्स में ये कहा जाता है, Vertrouwera je maar één keer kwijt. Aap goed samadhaar hai aur samaj gaye honge.

ये सुंदर सा भजन का स्पॉन्सर करने वाले रोटरडम होफ्लीट टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात 46 से श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लीडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से ये सुंदर सा भजन को हम सब सुने।

जिनके नाम से रातों में भी उजाला हो जाए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपको सपनों में भी आए और कृपा बरसाए। प्रभु श्री राम, जय श्री राम।

की औरों की रोशनी में मुस्कुराओ। जब किसी और का दीपक जलता है तो अंधेरा नहीं बढ़ता है, रोशनी ही फैलती है।

जो दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, वे अपने भीतर की दीपक को प्रज्वलित करता रहते हैं।

सफलता समीप्त नहीं होती। सफलता समीप्त नहीं होती, वे एक दीप से दूसरे दीप तक जलती ऊर्जा

इस बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराई जी, विजयंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, श्रीमान सुरेन जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस्ट संजय, करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरो रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी और राजेंद्र सिंह जी की ओर से एक सुंदर सा भजन।

ए रब, मेरे दुआओं में असर इतना रहे, मेरे चाहने वालों का दामन हमेशा खुशियाँ से भरा रहे। ये सुंदर भजन जो चलाया गया फाहुन के दिरक्सी और क्रू के ओर से, श्रीमान कुमार घेराव जी, जॉनी सुरजबाली जी, शांता खेमाई जी, रजेश बदलू जी, राजन द्वारका जी, प्रदीप फेराय जी, विजंती नाथू जी, रोसिता गिरजा सिंह जी, सुरेन भगवान जी, बबली आसरा जी, अमित अवतार जी, रोमियो होस जी और संजय करण सिंह जी, गंगा जी, यूसुफ जी, मफरू रहीम बख्श जी, श्याम पूरन जी, अनुराधा चंदर जी, राजेंद्र सिंह जी और हैन के ओर से ये सुंदर सा भजन जो चलाया गया। आशा ये रखता हूँ कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए। यहाँ से कार्यक्रम जो दूसरा मोड़ दिया जाता है, सभी को एक शुभ दिवस।

चली मैं चली, रफीजी और लता जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। सुन वालों, दोस्तों, एक अच्छे और एक बुरे दिन, एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, वे है कि आपके नजरिया, आपके नजरिया, बस यही अंतर है। और उस पे हो सके तो जरूर काम करना, क्योंकि बुरे दिन बताकर नहीं गाते हैं,

तो कहा जाता है कि भरी बरसात में तो पी लेने दो और हमें जीने दो, पर ये बात में मत रहना, क्योंकि कहा गया है कि आज तक किसी जो पीने में दिल रखे हैं क्या कभी छोड़ पाए हैं। तो दोस्तों, कुमार शानू और रूप कुमार के आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, और देखा जाए कि आज एक शुभ दिवस आपके प्रस्तुत हुए। और ये मत भूलना कि अगर आप जो फिल्म शोले भी देखे होंगे, तो उसमें जब अमिताभ बच्चन अपना दोस्त धर्मेंद्र जी के लिए उनके हाथ मांगने के लिए मौसी के पास पहुँचे, तो मौसी से सब अच्छे अच्छे बातें और कर रहे थे अपने मित्र के लिए, पर उसमें एक संदेश जो जावद अफ्तर का और सलीम जी का लिखा हुआ डायलॉग्स में से मौसी जी के आवाज़ में हम सब सुने कि आज तक किसी का जुआ और ना किसी का दारू छूटा है। तो इस पे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दारू पीने वाले भी हर बार अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ने की भी कोशिश में रहते हैं, तो औरों को बार बार सुनाते रहते हैं कि भाई मैंने तो छोड़ दिया, और चाहे आप उस पे ध्यान ना दो, फिर भी वो आपसे इसी इशारा करते रहते हैं कि मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों, एक अगला सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आर रहमान की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, मसा कली, जो फिल्म में काम किए हैं अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर। फिल्म दिल्ली 6 से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और ये कहना चाहूंगा कि क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। क्योंकि सलाह देने के लिए तो बहुत होते हैं, पर खुश रहने की वजह बहुत कम है।

सुना है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जैसे कि अभी आपने सुने कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है।

पा लेने के बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही जिंदगी का सफर है दोस्तों। और जो कभी कुछ आप पा गए,

होने का डर, क्योंकि कहा गया है पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर। हम इसी में लगे रहते हैं, बस इतना ही जिंदगी का सफर कहलाते हैं।

नुसरत और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी।

बाल सिंह चड्डास फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, और जो अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस अपना आवाज़ दिए, फिल्म में काम किए हैं आमिर खान और करीना कपूर।

दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए अनेकों तरीका क्यों ना हो, जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, और क्यों ना अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, तबलाइस्त्रन फिया इंटरनेट। दुनिया के हर एक देश में इसे सुना जा सकता है।

कहते हैं कि जीवन में एक बात तो तय है, जीवन में एक बात तो तय है कि हमारे अनुसार तय कुछ भी नहीं है, और जो तय है उसका हमें आभास भी नहीं है।

तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, और जो कसम खाया जाता है तो वो ऐसा वैसा चीज नहीं है जिसे शायद आप सोचे कि कसम खा लिए है, और चलो उसे भूल जाना। क्योंकि ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें, ना संघर्ष खत्म होता है और ना शिकायतें। एक चीज तो जरूर है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारी उम्र। धीरे धीरे जो खत्म हो रहे है वो हमारे उम्र है। आज कुछ पुराने गीत और कुछ 90s के रोमांटिक सॉन्ग के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहे। यही आशा लेकर कि जरूर कुछ न कुछ इसमें से आपको अच्छा लगे होंगे।

हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9

जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। इस शब्दों के साथ सुनने वालों, हम आपको एक बार फिर बहुत प्यार के साथ स्वागत कर रही हूँ।

फिल्म गैम्बलर से निकाला गया ये सुंदर से गीत के दिल आज शायर है। फिल्म गैम्बलर ने खतिन ए नसीफन तक ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है।

के गिरा खोल दो, चुप न बैठो, मेरे पास आओ। ये सुंदर सा गीत आपके लिए चढ़ाया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और जरूर सा आपसे बता दें ये सुंदर सा गीत जो हमने मिलकर सुने हैं, ये गीत को गाए हैं लता जी साथ में मन्ना दे जी। हार के भी हार को भी हंसना सीखिए, हार को भी हंसना सीखिए, क्योंकि रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। एक बार फिर, हार को भी हंसना सीखिए, क्योंकि रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती।

0: जाग दिले दीवाना, रुते हैं ये बहार की, ऐसे सुनते ही जिल करता है कि ऐसे सिमट जाओ। मैं कहती हूँ फिल्म ऊंचे लोग से निकाला गया सुंदर सा गीत निकलती फाइव तक की पिक्चर है इसकी। और फिल्म है रफी जी की आवाज में हमने यहाँ पे श्रवण की है। मैं कहती हूँ कि आज जो है जो दिन हमको मिला है इसे जरूर से ऐसे कुछ काम करे कि अच्छे यादगार बन जाए।
1: दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, मुझे अफसोस है, अभी अभी दो एक ऐसी बातें हो गई हैं कि मुझे इस महफिल से उठना पड़ रहा है।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: बातें कुछ ऐसी हैं कि मैं कह न सकूंगा और शायद आप सुन भी ना सकेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं।
0: ये एक छोटी सी डायलॉग है देवानंद जी की आवाज में।

रफी जी की आवाज में हमने यहाँ से एक बार फिर सुंदर सा गीत श्रवण की है। खुद को पढ़ता हूँ, खुद को पढ़ता हूँ, फिर यूं ही, फिर यूं ही छोड़ देता हूँ। एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूँ।

0: सबसे बड़ा रुपया ये महमूद जी की आवाज में हमने ये गीत को श्रवण की है, सुने हैं। कहते हैं कि चिंता को छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य ही ना समझे उन्हें शून्य की तरह मोल दो। शून्य यानी कि नल की तरह मोल दो।
1: ये मेम साहब है ना, एक ऑर्डिनरी ऑफिस में ऑर्डिनरी टाइप इसे, और ख्वाब महलों की देखती है। हमेशा नजर ऊपर होती है, हमेशा नजर ऊपर।
2: ऊपर भी कुछ नहीं है मेम साहब।
3: तुम्हें क्या मालूम?
2: सच, मैं एक लखपति मनमोहन साहब को जानता हूँ। दौलत उन्हें तो कोई खुशी नहीं दे सकी।
0: सुनिए जी, जिंदगी क्या है,

फिल्म माया से निकाला गया वही मशहूर कलाकार गीतकार यानी कि मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में हमने यहाँ से सुने कि जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल और मीठी जुबान। शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है कि बस दोनों जितना करे टकराने की।

फादर इब्राहिम फिल्म का नाम इज्जत और गीत को गाने वाला था है। हाँ जी मैं कहती हूँ है क्योंकि हम वो शख्स तो नहीं रहा पर उनका गीत हम यहाँ से श्रवण कर रहे सुन रहे मन्ना दे जी की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखो, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटनों चले या ना चले मन उड़ता परिंदे की तरह रखिए।

0: बाबा उसले मलाई हजुरले जस्तै सधैँ खुसी राख्छ धेरै माया गर्छ
1: फर्स्ट एभर नेपाली डुएट्स आपने सुने आपके लिए हमने चला दी और वो भी पवनदीप राजन और अरुणिता कांजलाल की आवाज में

लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है, लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है, और प्यार की ज़रूरत, हाँ जी प्यार की ज़रूरत दिल में होती है। आपके लिए धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता

धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता सुंदर अति सुंदर आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, फूल तो फूल थे, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू।

दिल है धड़कनों की कसम वाकई में कि बेताब दिल है, और ये मौसम भी कहते हैं कि बेताब दिल है, आप कहाँ हो धड़कनों की कसम। फिर मिलेंगे, फिल्म का नाम है श्रिया घोषाल और सोनू निगम के आवाज में आपने सुने। Friendship is heel besonder and special. Friendship is heel besonder and special. Kopen kun je het echter niet. Friendship kun je echter niet kopen. Maar de juiste personen zullen er zijn. In tijden van vreugde, maar ook bij verdriet. Ja, dat is wel zeer zeker. मोहब्बत खुद बताती है, कहते हैं कि मोहब्बत खुद बताती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसको आंखों में रखना है और किसे दिल में बसाना है।

पपेमान एक्सक्लूसिव वॉल्यूम ऑफ 5 से आपके लिए इस वक्त के लिए सेलेक्ट किया गया है। हैप्पी टाइम हैप्पी टाइम द हैप्पी टाइम टाइम टू बी हैप्पी। यस यस यस यस।

रिकी शिव शरण जी के आवाज में कह दी है संगीत के द्वारे की कोई मेरी प्राणों में पागल प्यार बसाकर, और कहाँ गुम हो गए ये उनको भी नहीं पता, ये मेरे को भी नहीं पता। दूंगी मेरी हर खुशी का मतलब बस तुम्हारा साथ होना ही है, मेरी हर खुशी का मतलब बस तुम्हारा साथ होने को है।

ब्यूटीफुल अब्दुल्ला सुलेमान, ये जमीन रुक जाएगा जब तेरा चेहरा नजर आए, क्या बेमिसाल आवाज। और कहती है और कहता है कि डांटूंगी और सताऊंगी, हाँ डांटूंगी और सताऊंगी भी, लड़ूंगी भी, लेकिन तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, ये वादा है आपसे। और एक गीत हम देखे तो वो गीत कहाँ चला गया है, एक सुंदर सा देश गीत सुरीनाम देश खातिर ये गीत गाया है, हम देखो तो विजय गणपत जी, विजय गणपत जी एक देशभक्ति गीत गाई है, सुनने के लिए हम तैयार हैं।

स्वीट सरनांग विजय गणपत बहुत अच्छा से और म्यूजिक दी है ज्वाला स्टूडियो, ज्वाला स्टूडियो और गायक जैसे हमने बताए है विजय गणपत सरनाम के बारे में कुछ हमको सुना दी है यहाँ से। आज कुछ समाचार यहाँ से आपके लिए भी है, वो भी होना चाहिए ना। 10:16 गुजर गया है आज शनिवार के सुबह के कार्यक्रम से। हम आप और सभी जो सुनने वाले हैं देश विदेश दूर दूर से, आप सभी को हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है। नीदरलैंडर्स में मशीन खवेरन बवाक्तन रिकॉर्ड पार्टी फन 30,000 किलो कोकाइन। इट वाज़ द ग्रोस्ट ड्रग्स फंड ओइट 30,000 किलो कोकाइन नाम द स्पेनसे पुलिसी वीक फ्राइडे इन बेस्लाग। De monsterpartij werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders en een Surinamer. Blijkt uit Spaanse documenten. Het was uiteindelijk een tip van een criminele informant van de Nederlandse politie die leidde tot de vangst. 30.000 man. सोचो तो 30,000 किलो कोकाइन कितना लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बेचने वाला तो धनी हो जाएगा, हाँ पैसा तो माला माल हो जाएगा, मगर उसके बाद उकरे बाद कितने लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगा। हे मेरी माँ, ये सोचते नहीं, ये लोग सोचते नहीं, दौलत के भूखे हैं। इंसान की कीमत आज के दुनिया में, आज के दौर में बहुत कम हो के जा रहा है, अफसोस है, बहुत अफसोस के बाद। डॉरप्स वर्ड हैक वन स्लोप फरकेर टाइडेंस अफ्लोटिंग A12 यका नर्गंस हीन। Nieuwerbrug. De inwoners van Nieuwerbrug worden er gek van sluipverkeer tijdens de wegafsluiting van de A12 in de route door het dorp, het enige alternatief. Het dorp staat dan muurvast. Vooral als u dat niet gewend bent in uw omgeving, dat het zo druk wordt en opeens dat het druk wordt, dan ja, dan raak je toch een beetje uit balans. Het is ook een beetje begrijpelijk. Maar het kan niet anders. Het is ook niet dat het eeuwig zo daar gaat blijven, langdurig, maar het is voor korte tijd. Als die A12 weer hersteld is, open is, dan is die drukte ook dan weg bij de Nieuwerbrug.

रखना मेरा ख्याल अब उम्र भर के लिए, रखना मेरा ख्याल अब उम्र भर के लिए, लो मैंने अपने आप को तुम्हारा अमानत कर दी है, मैंने अपने आप को तुम्हारा अमानत कर दी है। मोतीमाला भोला सिंह जी के वास में।

क्वीन मोतीमाला भोला सिंह जी की आवाज़ में एक बार फिर हम सुनेंगे। उससे पहले ये कहूँगी, ना कम होगा ना ख़त्म होगा, ना कम होगा और भी ना ख़त्म होगा, ये प्यार है जनाब, ये प्यार है जनाब, हर पल होगा।

बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपका क्या ख्याल है, आप तो साथ देंगे ना, नहीं भूलेंगे मेरी को। Every hour has its own value. Don't wait for a right time. Use every moment. चाय गरम होठ नरम, चाय गरम होठ नरम, जानू 21 दिन में क्या शर्म।

नैना बांदे सुंदर पोपो जी की आवाज में आपके लिए पेश किया गया Als je een gelukkig leven wilt leiden, als je een gelukkig leven wilt leiden, verbind het dan met een doel. Verbind het dan met een doel, niet aan mensen of dingen. Kajal, aankhe, zulfe, jhumke, chehre par noor hai re. दिल हार गए हम तुझ पे तुझे बेनकाब देखकर तुम हो जो हर किसी के नज़र में हो एक तुम हो जो हर एक किसी के नज़र में हो एक मैं हूँ जिसकी हर नज़र तुम हो दस मिनट बाकी है दस मिनट बाकी है ग्यारह बजने में डिरिजेंट सागत फ्लैग फॉर ऑप्ट्रेडन इन एलकार एन ओवरलेड हैथ हैव डीप इंद्रक खमाक एंड दैट न्यूज कम्ड आउट Pijn Aker, de man die onwel werd tijdens het feest van bevrijdingsdag in Pijn Aker is overleden. Hij had een hartstilstand. Het gaat om dirigent Anton Pijn Aker.

स्पेशल स्पेशल आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है मातृ दिवस के उपलक्ष पे, और ये भी गिफ्ट तोहफा के रूप में आपको आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से याद किया जाता है। द वीरल्ड लाइक ऑन फॉर ली द सुंदर मुदर द वीरल्ड लाइक ऑन फॉर ली द सुंदर मुदर द हेल वीरल्ड berust op moederliefde. De hele wereld berust op moedersliefde. Zij is de belichaming van zegeningen. Zij is de belichaming van liefde. Op de moeilijkste momenten is moeder de belichaming van vrede. De schoot van een moeder is de grootste rijkdom ter wereld. De schoot van een moeder is de grootste rijkdom ter wereld. Elke pijn die erin verborgen ligt, is het zoetste gebed.

मेरे दिल में, आपके दिल में भी रहती है माँ। चाहे वो आपके पास नहीं है, पर माँ, माँ, माँ का प्यार हमेशा हमेशा हमारा साथ रहे और सदियों सदियों तक, सदियों तक पता नहीं हम ना रहे फिर भी माँ का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। माँ का प्यार अनमोल है, अनमोल है। माँ, मदर इज नीत सो मार अनवर्थ, मदर इज नीत सो मार अनवर्थ, सै इज हेथ वेरल्ड, सै इज मेन हील वेरल्ड, ze geeft me te eten, zelfs. Ze geeft me te eten, zelfs als ze zelf honger heeft. Ze geeft me te eten, zelfs als ze zelf honger heeft. Begrijp mijn pijn zonder dat ik het haar hoef te vertellen. En geef zelf haar dromen op voor mijn geluk. Moederliefde neemt nooit af. Ze is er altijd bij ons.

0: इसी गीत के साथ मैं आपसे रुखसत हो रही हूँ। हैप्पी हैप्पी टाइम, हैप्पी हैप्पी टाइम आप सभी को पेश हो रही है।
1: चले जाने,
0: अपना ख्याल रखना, साथ ही साथ औरों को भी ख्याल रखना। दुआ प्रार्थना में मेरी को याद रखना। स्वीकार कीजिए यहाँ से आज के लिए मेरी प्यार भरी नमस्कार।

बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें।

0: करम कहू किस्मत कहू, करम कहू किस्मत कहू चाहे कहू तकदीर पहले बना पर भावत पीछे बना शरीर, करम के गठी लात के जग में फिर इंसान जो जैसा करे वैसा ही भरे विधि का यही विधान, करम करे किस्मत बने जीवन का यही मरम, प्राण तेरे हाथ में ही प्राणी तेरा अपना ही करम। सुने वालों की सेवा में सादे सी नमस्कार, मेरी आदावर सो राजगुरु फाहुन की प्रोग्राम जो है ये दोपहर के कार्यक्रम यहाँ से आप आगे सुनने को जा रहा है।
1: अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है तब जा करके किसी की माँ को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahun.
3: Digitaal radio, internet fahunfm.nl.
0: Toch, maar satio. प्रथम में जो बीमार लाचार है उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, माता में घर पर सहन शक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं आपके लिए। और जाकर किसी के जन्मदिन है, कोई खुशी के दिन है, आज का दिन तारीख जैसे आपको मालूम है नई हमें बेदों से तक दोपहर है सैफ उ फतवाल है, तो आपको जन्मदिन के अवसर पर बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएं। और यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें आपके लंबी लॉन्ग लाइफ इन खुद खसोन थे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो, शनिवार का दिन है, अच्छा मौसम है, ओलंत में यहाँ पे धनाक से प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है हमारी साथियों। और जबकि मैं आपका सेवक श्याम पूरन अभी कार्यक्रम सुन रहे थे कुलेखा सहयोगी शांता जी के जरिए से, देवी जी अपने अंदाज में प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत किए, यही मैं सोचा हूँ आपको पसंद आया हुआ होगा। रुखसत हुए और मैं ये प्रोग्राम को आगे में कुछ पल तक आपके साथ देंगे, और ये सोचकर यही कि आपको मेरा प्रोग्राम जो है आपको पसंद आएगा। हमारी साथियों गलतियां हो जाए माफ़ कर देना, इंसान हो ना, यही सोच रहा हूँ। और आप जो है सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और सेहतमंद सेहत आपकी बनी रहे, यही चाहते हम सब मिलकर। आप सुने ना, सर्व भवन्तु सुखिना सर्व संतु निरामय। और वासुदेव कुटुंबकम जानते हो, सारी दुनिया में सृष्टि में सब एक परिवार है। अहिंसा परम धर्म हमारी है, नहीं अपने शब्दों से अपने वाणी से या कोई ऐसी कोई के कोई तरह से किसी तरह से कोई ऐसा और दुख मत पहुंचाना, यही हमारी सनातन धर्म सिखाता है हमारे साथियों। और जबकि यहाँ कुछ पल तक आपके साथ मैं हूँ, मेरा सौभाग्य बंदे खलुक है कि आपके साथ मेरा ये पल जिंदगी के बीत रहा है। जहाँ भी आप हो फिर से एक बार खुशहाल रहो और साथ में कुछ पल के लिए

Het is de 13 minuten over 12 voor je lachen. साथियों तो आज के कार्यक्रम अभी आप सुनेंगे और आगे के कार्यक्रम प्रोग्रामिंग आज की जो है जैसे मैं जानता हूं और जो है अभी श्रीमती देवी जी जो है चंद्रा राम खिलावन और शाहिद्दीन से आप धार्मिक प्रोग्राम सुनेंगे फैफ ऊफर हलफ इन फेफू फरहालफेन उसके बाद दो और तीन के दरमियान श्रीमान राजकुमार रोली मोहन सुनाम से और सुनाम के समाचार एक्चुअलिटी से प्रस्तुत करेंगे राजनीति के क्षेत्र पर जो है देश के हालात है उसके बारे में बतलाएंगे ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो श्रीमान शिव चेतन भैया कुमार घिराऊ इन लोगों के संघर्ष से ये प्रोग्राम बन रहा है चला रहे हम सब मिलकर और हर एक को ये जो है जहाँ भी आप खुशहाल रहो हमारी कुलेखा है रजेश भगवंत जी भी और वो आकर उनके भ्राता भैया संजय भगवंत आकर भी यहाँ पे प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं अपने अपने और कर्म जो है हम लोग के करना चाहिए धर्म के प्रचार करना चाहिए ना जवश्य जैसा आपको मालूम है उसी तरह से जहाँ भी आप खुशहाल रहो और प्रोग्राम फाहुन के सुनते रहो तो अभी ये एक दो संगीत कुछ गीत संगीत ना

0: पद्मा श्री कुमार सानू जी की आवाज है ना,
1: करने में आता है तुझसे ही
0: या पद्मा श्री, ये पद मिला हूँ उसे।

आपको इतराज ना हो तो यूं ही कह देता हूं, पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती, तन्हा वो चांद भी है सितारों

अभी कुछ घड़ी के अंदर में श्रीमती जो है पंडिता ये देवी जी चंद्रा राम खिलावन साहिद दिन से और धार्मिक प्रवचन आप श्रवण करेंगे।

भैया सुरेन सुरेन भगवान दिन प्रोग्राम सुधा है भैया। और यूं ही मैं कह देता हूँ, हमारी कुलेखा जो है सहयोगी सुरेन भगवान दिन के तरफ से यही कहना है कि आपको शुभ शुभ शुभ फैन वीकेंड हो।

तो जैसे आपको मालूम है अभी कुछ घर के अंदर में पंडिता जो है ये देवी जी उनकी धार्मिक प्रोग्राम आप सुनेंगे एक दो मिनट के बाद में। पंडिता चंद्रा साहिब बिन राम खिलावन के उनकी मुखारबी से।

0: हमारे साथ हो यहाँ से, और वादा के मुताबिक जैसे प्रति शनिवार के प्रस्तुत होता है और जाकर धार्मिक प्रवचन आप श्रवण करिए। और श्री पंडिता पूज्य पंडिता जो है अखंड विद्वान जाकर चंद्रा राम खिलावन साहिदीन के जरिए से लाइफ इस वक्त है, और जाकर दोनों हाथ जोड़ के साथ से प्रेम नमस्ते देवी जी इवेंट लाइफ एंड खात इफान।
1: नमस्ते श्याम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटी से उपदेश लेकर उपस्थित हूँ कि ओम यो न भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठति स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। Sarvabhoumabhivadhan, univers Seele groet, namaste. Met al de kracht van mijn armen, met alle wijsheid in mij, met al de liefde in mijn hart, betoon ik mijn plicht en eerbied aan de Atma in u. Ik ben Pandita Chandra Sahibin Ram Khilavan Arya, van Arya Samaj. Updesh, Sikha, Sikhne Yogya Bate, Nasihat, Itki Baat Batlana, Jo Achcha Banna Chahte Hai, Usse Achche Updesh Dena. Updesh Karne Wala, Sikha Dene Wala, Ghoom Phir Kar, Hamesha Achchi Baaton Ko Prachar Karne Wala Vyakti, Vidwan, Jo Achcha Banna Chahte Hai, Usse Updesh Dena. जिस बात का उपदेश करना उचित हो, जो अच्छा बनना चाहते हैं, शिक्षा ज्ञान कहना देने योग्य बात है। मैं कुछ अब ये जीवन के लिए बताने जाती हूँ, मनुष्य के लिए। नीदरलैंड्स में द मैंस हैथ इंटेलिजेंट वीजन, यानी कि मनुष्य सबसे ज्ञानी दुनिया पर है, ज्ञानी लोग जो है तो दुनिया पर है। तो इसी के विषय में नीदरलैंड्स में मुझे कहा गया कि नीदरलैंड्स में प्रवचन करना, तो इसलिए ऑफ आर द स्टार द मैंस बोथ ऑन द अंदर वीजन है हिस्ट फर्स्टैंड इंटेलेक्ट एंड दिट हेफ्ट हैम द मोगलिकेट om bewust te handelen. De Veda zegt dat dit lichaam door Paramatma God is uitgekozen om de Atma te bevrijden. Alle andere wezens hebben een Atma, maar de andere wezens ondergaan hun lot totdat ze bevrijd worden. De mens heeft de mogelijkheid om bewust te handelen. Hij kan denken. Daarom kan hij zijn Atma zelf leiden naar een hoger niveau. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Waarom moet ik sterven? Over de bewuste toestand kunnen we zeggen dat we eten, lopen, drinken enzovoorts. Dit doen we met behulp van ons lichaam en de diverse organen. Maar in onze slaap kunnen we dit ook beleven. We zeggen dan, ik heb dat ervaren in mijn droom. In de Indiase filosofie wordt deze ik de Atma genoemd. De Atma is vormloos, onstoffelijk, zuiver en eeuwig. De Atma komt bij de conceptie van een wezen in dat lichaam. Als de Atma in een mensenlichaam komt, betekent het dat zij de kans heeft gehad om zich te bevrijden. Want alleen via een menselijk lichaam kan de Atma bevrijding vinden. Dit brengt ons naar het doel, bevrijding van het aardse en Paramatma vinden. De mens kan denken en handelen en kent het verschil tussen goed en kwaad. Alle goede handelingen van de mens en het gebed helpen hem om zijn Atma op een hoger niveau te brengen. Paramatma wil niet dat de zielen blijven lijden. Hij geeft ze steeds een eerlijke kans om hoger op te komen. In de Veda staat dat zij die in het eeuwige licht van Paramatma God willen leven, de Vedische regels moeten naleven. Dus het doel van Dit leven is om via dit mensenlichaam steeds hoger op te komen en tenslotte bevrijd te worden van belichaming. Een algehele bevrijding van de atma is echter niet mogelijk. Er zou dan immers geen verschil meer zijn tussen atma en paramatma God. Dit betekent dat bij een nieuwe cyclus een nieuw begin van leven ergens op een planeet weer belichaming plaatsvindt. De mensen die ergens op een planeet eindigen met een positieve balans, beginnen weer als een intelligent wezen. Zo worden de atma's van de rishis en maharishis weer belichaamd om de anderen de weg te wijzen. Zij, de verlichten, zijn ontvankelijk voor de goddelijke kennis. Deze rishis en maharishis wijzen anderen de weg naar Paramatma God. Het sterven is een noodzakelijkheid, omdat het lichaam dat uit oerelementen is opgebouwd nooit een eeuwig bestaan kan hebben. Als het lichaam oud wordt, ruil je dat in voor een nieuwe. Maar let op, wat je bij de ruil krijgt, heb je zelf verdiend. Bestel dus iets goeds voor het volgende leven. Wat is het bestaan? Het bestaan volgens de Vaidik Dharma betekent dat alles op aarde dat ontstaat steeds verandert en dan weer ontbonden wordt. Een constante verandering is een natuurwet. Alles verandert van minuut tot minuut, van dag tot dag. De dag van gisteren is niet dezelfde als vandaag. Het bestaan van de aarde en alle andere zaken is een feit. We zien het maar. Alles zal eens worden ontbonden. De bloemen, de planten, de dieren, ook wij, de aarde, de zon. Kortom, alles heeft een levensduur, is aan tijd gebonden. Ze ontstaan, bestaan en vergaan. Het is een doorlopend proces. De Vaidik Dharma zegt dat alleen Paramatma God de atma, ziel en de oerelementen, natuur, eeuwig zijn. Dus als iemand doodgaat, blijft de atma bestaan, maar het lichaam vergaat. De oerelementen van het lichaam worden opgenomen in de natuur en de atma krijgt weer een nieuw lichaam. In dit ontstaan en vergaan moeten we ons doel herkennen. Alle schepsels in de natuur, maar ook de planten en de natuur zelf, volgen deze weg. Het is een natuurwet. Maar omdat Paramatma God het menselijk bestaan, onze atma wil bevrijden, moeten we nu zelf eraan werken. Hij heeft ons de middelen gegeven, het menselijk lichaam en het intellect. Dat wil zeggen, denk na, handel goed en bereik je doel. De Vaidik Dharma gaat ervan uit dat de mens het ware geluk tijdens zijn bestaan leven moet zoeken. Hij moet beseffen dat hij bestaat, omdat zijn atma bestaat. De mens van nu denkt meer aan het lichaam en minder aan de atma. Wil de mens het ware geluk, dan moet hij aan beide aandacht besteden. Dat is gewoon de sleutel tot het verkrijgen van anand, gelukzaligheid. Je ziet er een zeer namelijk ook weer gaan die naar hij op de jeevan per. Je ham manusje hai, hamne kya karna hai. Mai kal mataon ki matri divas hai. Mai har ek matao, behno, betiyon ko badhai dena chahti hoon. Sabko shubh kamnaye ho. Aur mai thodi si shayari karti hoon. Dekhiye, acha lagega aapko, pata nahi, lekin bolti hoon. रिश्ते में झुकना कोई बड़ी बात नहीं, सूरज भी ढल जाता है चांद के लिए। पता है आपकी और मेरी मुस्कान में क्या फर्क है, पता है आपकी और मेरी मुस्कान में क्या फर्क है। आप खुश होकर मुस्कुराते हो और आपको खुश देखकर मैं मुस्कुराती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप खुश रहे ताकि मेरी मुस्कुराहट बनी रहे। ताकत की जरूरी तभी होता है जब कुछ बुरा करना होता है, यानी ताकत की जरूरी तभी होता है जब कुछ बुरा करना होता है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। प्यार बुढ़ापे में भी जवान रहता है, यानी प्यार बुढ़ापे में भी जवान रहता है। ऐसी नहीं है कि लोग बूढ़े होकर हंसना छोड़ देते हैं, बल्कि सच तो ये है कि जो लोग हंसना छोड़ देते हैं वे बूढ़े दिखने लगते हैं, यानी वे बूढ़े दिखने लगते हैं। खुशी की आंसू रुकने ना देना, गम के आंसू बहने ना देना, ये जिंदगी ना जाने कब रुक जाएगा, मगर ये प्यारी सी रिलेशन कभी टूटने ना देना, यानी दोस्ती जो है प्यार है कभी छूटने ना देना। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसका हृदय है, यानी हार्ट है। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसका हृदय है, अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अच्छे लोगों का इज्जत कभी कम नहीं होता, सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसे कभी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तुम कल के फिक्र में अपनी आज को बर्बाद ना कर। कोई कहता है इस सूर्य और चंद्रमा पर मेरा हक है, कोई कहता है इस धरती और आकाश पर मेरा हक है, कोई कहता है इस सागर और पर्वत पर मेरा हक है, परमात्मा कहता है अरे पगलो इन सब पर मेरा हक है। तुम तो यहाँ 2 दिन के मुसाफिर है, आज यहाँ तो कल फिर कहीं और, तुम तो आते और जाते रहते हो। एक दूसरा शायरी है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखा ऋषियों की वाणी हूँ। शीशों से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितना जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है मुझ में, इस जग में जितना जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है मुझ में। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तुम कितने कंकड़ पत्थर फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं अब फिर लड़ने का खौफ नहीं, अब फिर लड़ने का खौफ नहीं। तुम हालातों के भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे फिर लड़ने का खौफ नहीं, तुमसे फिर लड़ने का खौफ नहीं। अच्छा स्वभाव वो खुशी है जो सदा के लिए सभी को प्रिय बना देता है, अच्छा स्वभाव वह खुशी है जो सदा के लिए सभी को प्रिय बना देता है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी ना किसी के वादों में आ ही जाते हैं। इसलिए स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई है, इंसान की स्वभाव ही अपनी कमाई है, सबसे बड़ी दौलत है। आपका जीवन शुभ एवं मंगलमय हो, सदा खुश रहो। मातृ दिवस पर बहुत बहुत बधाई हो सभी माताओं, बेटियों, बहनों की, और रेडियो फाहोन और श्याम भाई जी, बेटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ तक छोटी से उपदेश था, अच्छा लगा हो तो ठीक है, ना अच्छा लगा हो तो छोड़ देना। अच्छा, नमस्ते, धन्यवाद।
0: तो यहाँ तक कि ये देवी जी जो संस्कार अपने माँ पिता से पाई है और वही संस्कार आगे में जाकर आपके तरफ आपके लिए पहुँचा रहा है, जहाँ आप जाकर अपने जीवन को जो है स्वस्थ और सफल बनाओ। मैं एक सुख उपसुकता वोर्द देवी जी, किस शब्दों में मैं आपको धन्यवाद कहूँ और जाकर तारीफ करूँ, कनी वोर्दनी कहूँ की है, फिर भी आपके प्रवचन बहुत सरल रूप में आपने लोगों के जो सुनाए आज का दिन धार्मिक संदेश। मैं संस्था आर्य समाज से जुड़े हुए हो और आपकी संस्था फूले फले और हमेशा इसी तरह से जो स्वामी महर्षि स्वामी दयानंद हम लोग के देके गए है तोहफा ये
1: हाँ जरूर जरूर जरूर। एक छोटी सी बधाई दे दूं, मेरी बेटी भारती जो राय के बेटी के आज जन्म दिवस है, उनको बहुत बहुत बधाई। यानी उसका नाम है सफीरा जो राय राम खेलावन, बहुत बहुत बधाई हो सफीरा एंड इरेन भारती एंड द हेल फैमिली, बनहार तक फैलिशिटी।
0: हम लोग अपने तरफ से हम लोग तरफ ये परमपिता परमेश्वर ओमकार भगवान से प्रार्थना करें उनकी लंबी आयु हो, जीवन उनकी जो है स्वस्थ और सफल रहे, तंदुरुस्ती बनी रहे।
1: धन्यवाद जी, नमस्ते।
0: देवी जी, हाथ जोड़ के साथ से प्रेम नमस्ते, और आने वाले शनिवार को फिर जो है आपके धार्मिक प्रोग्राम आप सुनेंगे।

और जानते रहना अभी रोली मोहन 2 और 3 के दरमियान सुनाम से मैथ अक्टुअलिटी और लेकर उपस्थित रहने वाला है श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जी। और आगे के प्रोग्राम भैया रजेश बदलू ने संभालेगा, को लिखा है सहयोगी है। अभी तो मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ परिवार राम खिलावन के तरफ से। खुशी की पल, खुशी की घड़ी आपको प्राप्त हो। अल्फन अन्य रह से परिवार जो है चांद रघुनाथ धर्म पत्नी खीस और सभी बाल बच्चों समस्त परिवार की तरफ से। संध्या डंकवेल फुरी टेलीफोन च इंटरनेट के जरिए से प्रोग्राम जो सुनते हैं फेसबुक के जरिए जो मैं देख रहा हूँ रियाक्सिस डंकवेल इधर इन सबको हर एक को। और दुबई में प्रोग्राम सुनते हमारे अन्य जी भी जो है प्रोग्राम सुनते अन्य भी जी आपको तहे दिल से शुक्रिया, हृदय से धन्यवाद। कहा हो कश्मीर में ना। वहां के मौसम कैसा है बतलाइए जरा से।

0: तो फिर साथियों प्रोग्राम में ये ख़ास जो है जिन लोगों के जन्मदिन आज उन लोगों को हम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से बधाई या शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं और यही परमपिता परमेश्वर के हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यही कि लंबी लॉन्ग लाइफ इन खुद खुशों थे यही हम सब मिलके और चाहते हैं हमारे साथियों ईमान अंदरलैन चल के सुनते यही लो खुद मेरा
1: भैया शाम हम बाटी गंगा हमके सेंडिंग में ना ले है
0: यू वेंट अली इन द सन भैया
1: नहीं नहीं दम उसमें ए सुबह हाल एक मुतम बहुत खर दूर से ही
0: ओके आई शुड लीव ओके चल यह वैसे में से ये भी होता ही रहता है और कार्यक्रम में ये नंबर जो यह है आपके लिए प्रस्तुत कर रहा था या

जब आ गया आप सुने हमारे भैया चंद्रसेन गंगा, कुछ संदेश उनको देना था और यूं ही मैं आपसे बतलाता चलूं कि आज के प्रोग्राम में जैसे आपको मालूम है वैसे तो कोई नहीं चाहता, फिर भी प्रकृति के नेम है, जो होता है तो होता ही रहेगा, प्रकृति अपना कार्य करेगा और जीवन हम आते हैं जाते हैं और जो है ख़ास करके जो है और हम लोग के पैदाइश होता है, जन्म जो है आता जाता रहता है ना, आलस आना जाना जिंदगी। तो आज के कार्यक्रम में आप जो है फाउन के माध्यम से फिर से और मृत्यु के समाचार 5:30 आप श्रवण करेंगे, वही हमारे भैया गंगा संदेश दे रहा था हमारे साथियों और फाउन के और दोपहर के प्रोग्राम में 12 मिनट ऊपर एन बीबी साहिबा रहीम बख्स और फारियल, ये दोनों देवियों जो है प्रोग्राम में साथ दें, सहयोगी है ना, फारियल और फारियल तंगाली और बीबी साहिबा मीना रहीम बख्स, इन लोगों के पसंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

खासकर के आज के ये दोपहर के प्रोग्राम में बीबी साहिबा अमीना रहीम बख्श और फारियल तंगाली जो है हमारी सहयोगी कुली खास थे और है, यही मैं सोचा हूँ इन लोगों के नाम से। मोहम्मद शरीफ इसाक आवाज़ है

जन्मदिन का अवसर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं समस्त परिवार मिलकर छोटी बिटिया सफीरा सफीरा को फेलिसिटेट। समस्त परिवार खुश है, ये दिन बहुत ही सम्मानों के साथ

0: जबकि बिटिया के जन्मदिन यहाँ समस्त परिवार खुश होके जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ बहुत ही और समारोह के साथ मनाएंगे परिवार साथ मिलकर।
1: मैं हंसू
0: उस यही हम सब भी चाहते हैं और यही तो है साथियों, जबकि सफीरा जी के जन्मदिन के अवसर पर सब मिलके क्या कहते हैं, बधाइयां शुभकामनाएं देते हैं, वही चाहते हैं कि बिटिया रानी

हमारे साथियों, सफीर के आज का दिन, आज का घड़ी पल जो है जन्मदिन के अवसर पर बहुत से बधाइयाँ समस्त परिवार मिलके दे रही है और यही सबको यही चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं? सब मिलकर दुनिया में इस रीति में अपने परिवार के लिए दोस्तों, तो वही इधरिन विल हैव, हम लोग का वही यही आर्य समाज क्या सिखाता है, सर्व भवंतु सुखिनिया सर्व संतु निरामय दोस्तों, यही संदेश दे रहे हैं इधर इन मुतखलुकसेन। और यही संदेश प्रथम में जाकर, और आप जानते हो ये बात, जबकि आज ये बिटिया की जन्मदिन है, परिवार राम खिलावन जो है, और जाकर ये परिवार बेटी को बहुत से आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्य और यही और बधाइयाँ शुभकामनाएँ प्रस्तुत करते हुए आखिरी में चलकर माता पिता उनकी जो है नानी नाना जितने आजी आदा सब मिलकर बधाइयाँ देते हैं, और ख़ास करके पनीता चंद्रा साहिब दीन राम खिलावन अपने छोटी बहन इरीने के, और जो है ख़ास करके उनकी क्लाइंट के जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद देते हुए।

हाँ बिटिया के जन्म दिन के अवसर पर राम खिलावन है ना। समस्त परिवार जो है बधाइयां और शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं।

तो हमारे साथियों आज के प्रोग्राम में यहाँ तक के छोटी बिटिया के जन्मदिन है, अब यही भगवान से प्रार्थना करें उनकी लंबी आयु हो और उनकी स्वस्थ बनी रहे, यही हम सब चाहते हैं। और जन्मदिन के छोटी बिटिया के और जो है बधाइयाँ शुभकामनाएं समस्त परिवार ने राम खिलावन जो है, खास करके क्या मैं कहूँ जो मेरी जहन में आ रहा है, और पंडिता जो है चंद्रा साहिबद्दीन राम खिलावन के छोटे बहन उनके क्लाइन केन्द उनकी बहन यानी कि इरेने के क्लाइन केन्द के जन्मदिन के अवसर पर बहुत ही बधाइयाँ और आशीर्वाद दे रही है ये देवी जी। उनके प्रवचन अभी आप सुने कि कितना खास करके आज के प्रवचन कितना शिक्षा भरी था और उसके अपने जीवन में जाकर उतारिए तो आपके जीवन जो है अवश्य स्वस्थ और सफल रहेगा। और ये तो जन्मदिन के बात है इरेने जी, आप मेरे तरफ से भी आपको सबको बधाइयाँ शुभकामनाएं, आपके पति श्री और समस्त परिवार जितना है सब जाकर और बधाइयाँ शुभकामनाएं दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं छोटी बिटिया को। तो बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए यही मैं कहूँगा जाकर जो है और जो है साथियों यूँ ही मैं ढूँढ रहा हूँ यूँ ही जाकर बतलाऊँ और ख़ास करके या साथियों यूँ ही और अभी 2 बजे के बाद में श्रीमान राजकुमार रौली मोहन सुनाम से जो है और जो है जाकर सुनाम के अक्वलित प्रस्तुत करने वाला है, उसी के इंतज़ार में है हम इस वक्त इस पल इस घड़ी हमारी साथियों जो है बिटिया के जन्मदिन के अवसर पर बधाइयाँ फिर देते हैं और सब मिलकर यही कहते हैं या सफीरा मैं सिंगर

साथियों, अभी 2 बजे के बाद में श्रीमान राजकुमार रौली मोहन सिंह नाम से आपके लिए जाकर समाचार और एक्चुअलिटी आते जो है सुना आपके न्यूज समाचार आपके लिए प्रस्तुत कर दो वाला है लाइफ। हाँ साथियों, लाइफ ये कहीं बांच होगा, लाइफ होता है ये प्रोग्राम जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम हमेशा जहाँ तक कोशिश करता हूँ आपके लिए लाइफ करने के लिए।

और कार्यक्रम सुनेंगे हमारी भैया रजेश बदलू से, और उसके बाद आगे में जैसे जैसे प्रोग्राम रहेगा आप जरूर से सुनते ही रहना। जैसे आप सुने हैं भैया गंगा जी आके अगर अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे 5 बजे ना।

हमारी साथियों, प्रोग्राम जो है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के शनिवार का कार्यक्रम है, दोपहर के प्रोग्राम है। नेख मैं तुवे दो से सेशन तुवे दिली मिनटें ऊपर तुवे हो चला है और अभी कुछ घड़ी के अंदर में ऊपर 10 मिनट के बाद 12 मिनट के बाद में श्रीमान राजकुमार रौली मोहन जी सुनाम से लाइफ आपके लिए, सुनाम के हालात, सुनाम के न्यूज़ और एक्चुअलिटी से जो सुनाम में हो रहा है उसके बारे में और आकर आपको और वो संदेश देने वाला है लाइफ। हमारे साथियों, ये प्रोग्राम जो है मैं आपके लिए प्रस्तुत कराए, ये लाइफ है। अति स्क्रीन बंच, अति स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हुआ प्रोग्राम, जैसे आपको मालूम है मैं यूं ही आपसे बतलाता चलूं। और जो है यहाँ पर कितने प्रोग्राम चलता है जैसे आपको मालूम है, फिर भी और उसके बाद भैया राजेश बदलू, राजेश के बाद में गंगा प्रोग्राम, हमारे भैया चंद्रसेन गंगा के प्रोग्राम आप सुनेंगे। और तब तक अभी कुछ संगीत हम आपके लिए पेश करूँ और उसके बाद रौली मोहन के बाद में कुछ संगीत, जैसे भी प्रोग्राम रहेगा आप सुनते रहना। अभी अभी कॉन्टैक्ट हुआ मुझको ये भैया रौली मोहन से, जो प्रति शनिवार के प्रोग्राम उनकी और जो चलता है ना एल के साथ ना, श्रीमान कुमार घिराओ भैया शिव चीतन के डंक वेल डंक से हुन आज कार्यक्रम हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

वाह रे वाह कलाकार राम प्रसाद राम खिलावन हमारे साथियों, यही तो है ये कलाकार हमारे सुनाम के है और अपना ही कलाकार, उनकी आवाज तो जरा से सुनो और उनकी सुनो क्या वो कहता है, जिंदगी में उतारो कैसे उतार सकते हैं, क्योंकि जो मिलता है उसे हम टाल नहीं सकते हैं साथियों, ये कर्म है, कर्म करो अच्छे कर्म करो तो अच्छा मिलेगा, गाली दोगे माँ के गाली दोगे तो क्या मिलेगा, हाँ लोग जो माँ के गाली देते हैं जो है संस्कार जिसको जो मिला होता है ना उसी तरह से बर्ताव करते हैं लोग।

सुने रहे हैं, जिसकी जो जैसा संस्कार मिला होता है उसी तरह से वो जिंदगी अपना जीता है, उसी तरह से बर्ताव भी करता है अपने लोगों से।

Doch meine Satio in Tussal 13, 14, 15 Minuten Ufer und 2 Hotelahe. Bilm nahi hua hai, phir bhi jaise jisko mauka pal lagta hai, samay lagta hai aur karya karte rehte hai na. Aur aaj jaise nahi market din hai, kitne log intezar kare ek telephone che sahate. Yun hi main aapse kehna chahta hu ki khas karke Shriman Rajkumar Roli Mohan ki samachar jo 2 aur 3 ke darmiyan प्रति एल के साथ रखो रहता है आज शनिवार का दिन है और 9 तारीख 9 मई 2026 क्वार्ट ऊपर 2 हो चला है दोस्तों तो कुछ समय के और जो है अब यही आप सुनेंगे श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जी के और जो है एक्चुअलिटी आते प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे भाई एक मतलब अलते एल क्वार दीप महात्मा के साथ ना और कीमती समय लेकर आपको जो सेवा करता है तो उनको मेरे तरफ से बहुत से धन्यवाद देता हूं मैं

तो हमारे साथियों यहाँ तक आप सुने श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जो जाकर खास करके सुनाम के और आज के समाचार हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया। आने वाले शनिवार को फिर से उनकी ये प्रोग्राम आप सुनेंगे।

वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह, कलाकार जो है आज के दिन, आज के ये पल जो है आज साथ हम लोग के सुने, और ये है कलाकार हमारे सुनाम देश के कलाकार जो है महान कलाकार दोस्तों साथियों, और जो है श्रीमान क्रिस राम खेलावन के पिता श्री था दोस्तों, और एक कलाकार है अभी तक, यही तक है। हम हमेशा कहूँगा कि कलाकार जिंदा ही रहता है, कभी मरते नहीं ना, इसी तरह से। और राम प्रसाद राम खेलावन जो संदेश आपको दे रहा है

आज़ादी दो। किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह लो, किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी के दुख देखने हो तो उसे अपने दुख बताओ।

तो ये मैं कह दूं आपसे कि आज नहीं तो कल उसे भी ये एहसास हो जाएगा कि नसीब वालों को मिलते हैं फिकर, हाँ, फिकर करने वाले हमारे साथियों।

अकेला था तो अकेला है ये और बोल था इस संगीत की हमारी साथियों, फिर भी जिंदगी में हम अकेले आए हैं ना, अकेले आए हैं, अकेले जी रहे हैं, अकेले फिर जाना है, कोई साथी नहीं, मिल जाता है साथी कुछ पल के लिए, कुछ घड़ी के लिए, और जीवन साथी कोई अपना ढूंढ लेता है, मिल जाता है, क्योंकि प्रकृति की नेम है ना। लोगों को झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों में बुराई नजर आते हैं ना, क्या बात है बतलाओ।

तो यही तो मैं इस वक्त अपनी और मित्र दोस्त से सवाल कर रहा हूँ भैया रजेश बदलू से, कि भैया रजेश दोस्त की कोई बात बुरा लगे तो खामोश हो जाओ, अगर वो दोस्त है तो उसे उस बात का दुख होगा, और अगर ना हुआ तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं। सही गलत मुझे मालूम नहीं, भैया रजेश बदलू मुझे बतलाएगा।

साथियों, संगीत आप ही के नाम ने, ये जिंदगी है, वक्त गुजरेगा, हम बिखर जाएंगे, कौन जाने हम किधर जाएंगे, हम दोस्ती की परछाइयां हैं। साथियों, जहां आप हुए तन्हा वहीं हम नजर आएंगे, तो यही ढूंढते रहना भैया राजेश बदलू जी।

0: यहाँ साथी हूँ। साथ जुड़े रहो और इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहो। आप जो फोन करते हो दमोदी को एक्स बदन के
1: इस कदर
0: हजूत में खुद है
1: प्यार।

तो यूं ही आपसे ये बतलाता चलूं मैं कि तेरी मुस्कुराहट मेरी पहचान है, तेरी खुशी मेरी जान है, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी, बस इतना समझ ले कि तेरी दोस्ती ही मेरी शान है। क्यों?

प्यार भरा कोई दर्द भरा गीत गजल जिसको जो पसंद है हर एक को अपने अपने पसंद होता है ना हमारे साथियों और इसमें से

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio.
2: Radio Vahon.
3: Digitale radio. VahonFM.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
7: जिंदगी की असली सच्चाई घड़ी 500 रुपए की हो या 5 लाख की वक्त दोनों ही सही बताती है गाड़ी 10 लाख की हो या 10 करोड़ की मंजिल तक दोनों ही पहुंचाती है खाना चाहे अमीर खाए या गरीब भूख दोनों से ही मिटती है तो फिर दिखावे की क्या जरूरत जिंदगी सादगी से भी जी जा सकती है लेकिन हां इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे क्योंकि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है और एक बात आंखें सब कुछ देखती हैं लेकिन जब आंख में कुछ चला जाए तो वो खुद को ही नहीं देख पाती इंसान भी दूसरों की गलती तुरंत पकड़ लेता है लेकिन अपनी गलतियां उसे नजर नहीं आती इसलिए खुद को सुधारो सच्चाई को समझो और बेवजह के दिखावे से बचो
8: हर एक कोई पर यकीन करना विश्वास करना गलत है ना
7: गलत लोगों से बचना है तो ये 3 बातें दिमाग में बैठा लो नंबर 1 जो सबसे ज्यादा भाई भाई करता है वही पीठ पीछे सबसे बड़ा धोखा देता है हर किसी पर जल्दी भरोसा मत करो नंबर 2 गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना गलत लोग आपको अंदर से खोखला कर देंगे चाहे आप उन्हें कितना भी बदलने की कोशिश कर लो नंबर 3 गलत लोग खुद नहीं बदलते वे सिर्फ आपको तोड़कर चले जाते हैं समय बर्बाद करने से बेहतर है कि उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दो
8: आपको ज्ञान है समझ है बुद्धि है उसे काम में लाना जरूर है
7: पहले लोग घर के दरवाजे पर आदमी रखा करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में ना घुस जाए आजकल लोग घर के बाहर कुत्ता रखते हैं ताकि कि कोई आदमी घर में ना घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और हाजत के लिए घर के बाहर जाता था, अब खाना बाहर खाता है और हाजत घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और बाहर वालियों को नाचने के लिए बुलाया जाता था, अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था, अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। गाँव के बुजुर्ग पूरे दिन आग से नहीं उठेंगे और पूछने पर बताएंगे, ये तो ठंड कुछ भी नहीं है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। लोगों ने अपने घरों को जन्नत बना लिया है, पर जन्नत में घर बनाना भूल गए हैं। शीशा और रिश्ता बहुत नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फर्क जरूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो कमेंट में यस।
8: बेंट एस मेड स्टेलिंग दोस्तों वीत निक आप जानो, फिर भी ये सही हकीकत है, पहले और आज में यही फर्क होता है ना।
2: घमंड किस बात का है मेरे दोस्त, दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है, इसलिए इन तीन चीजों पर कभी भी घमंड मत करना।
7: समझदार लोग हमेशा कहते हैं कि जिंदगी हमेशा एक भेड़िए की तरह जियो, पता है क्यों? क्योंकि भेड़िया कभी गिरी हुई चीज नहीं खाता, वह कभी सर्कस में तमाशा नहीं बनता और न ही किसी के इशारों पर चलता है, वह अपनी शर्तों पर जीता है। भेड़िये रिश्तों की कदर करना जानते हैं, वह अपनी माँ और बहनों के साथ संबंध नहीं बनाते और जब एक बार साथी चुन लेते हैं तो जिंदगी भर उसी के साथ रहते हैं। अगर उनका साथी मर जाता है तो वो कम से कम 3 महीने तक शोक मनाते हैं और कभी कभी ये शोक 1 साल तक चलता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि भेड़िये अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और शिकार करने लायक नहीं रहते तो बाकी युवा भेड़िये उनके लिए खाना लेकर आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। सोचो, एक जानवर जिसे जंगली कहा जाता है, वह रिश्तों की इतनी इज्जत करता है, अपने आत्मसम्मान के साथ जीता है, अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है, और हम इंसान शायद हमें भेड़ियों से बहुत कुछ सीखना होगा।
3: जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी उतना ही सच्चा और ईमानदार होगा जितने वो खुद हैं। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते और इसी मासूमियत की वजह से लोग उनका फायदा उठाते हैं और वो बार बार धोखा खाते रहते हैं। धोखा देने वालों को भी इनसे कोई डर नहीं होता क्योंकि वो इनकी खासियत जानते हैं कि ना तो बदला लेंगे ना उनसे लड़ेंगे, बस चुपचाप सब कुछ सह लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को इतनी तकलीफ भी मत दो कि उनकी वो अच्छाई उन्हें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी लगने लगे, क्योंकि मानो या ना मानो लेकिन हिसाब सबके कर्मों का होता है।
8: 24 घंटे लगातार आप इसे सुन सकते हो, जब भी अपना रेडियो ऑन करेंगे तो यूं ही जरूर हमें पाएंगे दोस्तों। पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सभी और कोली खास के तरफ से आपको खुशी खंड रख। जिंदगी में अगर कुछ बुरा हो तो सब्र रखो दोस्तों, जिंदगी जो हमारी है, जिंदगी जब जीते हैं सब्र करो ना। जिंदगी में अगर कुछ बुरा हो तो सब्र रखो, क्योंकि रोकर फिर हंसना, हाँ रोकर फिर भी हंसने का मजा ही कुछ और होता है ना। आपको इसके ऊपर क्या ख्याल है आप भी बतला सकते हो। काश कोई मेरा भी होता दोस्तों जो कहता, हाँ जो कहता मत रोया कर, तेरे रोने से मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ अकेला आया है और अकेला ही जिंदगी गुजारना है, अकेले फिर चले जाना है, क्योंकि

कन बने सुबह बतलाइए ये प्यार में ने ऐसा कुछ भी होता है जरूर से, क्या ऐसा हादसा ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? एक दूजे के लिए ना ऐसा दिलाना ही पड़ता है।

ये सिर्फ हक जताना छोड़ दिया, सिर्फ हक जताना छोड़ दिया, वरना मोहब्बत तो आज भी तुमसे है।

और ये प्यार के बाद जो होता है पहला प्यार, पहला प्यार हुआ भी तो ऐसे इंसान से जिन्हें भूलना, जिन्हें भूलना बस मैं नहीं और पाना किस्मत में नहीं। बताइए इतकी और ये समस्या जो है इनकी हल कैसे हो। ये पहला प्यार जो है, पहला प्यार हुआ, हाँ पहला प्यार भी हुआ भी तो ऐसे इंसान से जिनकी और जिन्हें भूलना बस में नहीं और पाना किस्मत में नहीं।

ये कभी कभी जो बात हम कहते हैं आपसे सुनते हुए, यही आपको सही लगा या नहीं वो बतला दे दिया आप मुझे, कि यूं ही कहता हूं सही कहा ना। अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात से दुखता है। दोस्तों आप ही बतलाइए, कौन करेगा, अपने ही करेगा ना, दूसरों से क्या बात है, वो तो रहता है एकदम जाकर ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, मुलाकात बात करते रहो एक दूसरे से, मुलाकात और बात करते रहो एक दूसरे से, ना जाने कौन सी मुलाकात ये आखिरी होगी। यूं ही और

nog maar niet zo. Ik film 1971. Film kram Hare Rama Hare Krishna. Nee, film se nikala hua. Aur ye sangeet aapke manoranjan ke liye is program mein maine aapke liye prastut kiya. Choti si zindagi hai. Har baat pe khush raho dosto. ये जिंदगी जो है एक बार हम आते हैं जीते हैं जी कर फिर चले जाएंगे ना तो छोटी सी जिंदगी है हर बात पे खुश रहो जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो अगर आवाज कहीं सुनने के मिल जाए और आज तो बहुत है ये जो है खास जो है टेलीफोन है तो बात कर लो दोस्तों छोटी सी जिंदगी है हर बात पे खुश रहो जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो जो लौट कर ना आने वाले उनकी याद में खुश रहो ना कल किसने देखा है आपने आप में खुश रहो ये सीख लो दोस्तों यही जिंदगी है और इसी को हकीकत में इसी को कहते हैं

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: नहीं कभी नहीं।

0: जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा होगा।
1: तो खुश रहो, अगर होगा तब इकरार इकरार हो गया है, तो इसीलिए तो वक्त से लड़कर नसीब बदल दे। वक्त जो है घड़ी, समय ना, समय बड़ा बलवान कहते हैं। और कहना मेरा यही है कि वक्त से लड़कर नसीब बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। तकदीर की रेखा आप बदल सकते हो अपनी कर्म करके। आप ये जानते हो कि वक्त से लड़कर नसीब बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों तो यूं ही सब्र करो, और यही जो प्यार करते हो तो

स्पेशल फॉर यू आप ही के नाम से ये प्यार भरी नगमा।

बतलाइए कैसा लगा ये प्यार भरी ये नंबर जो हम आपके लिए महम नहीं मैं आपके लिए प्रस्तुत करें चलाए और ये कार्यक्रम फाहुन के माध्यम से प्यार भरी नंबर न ज्यादा चाहता हूँ कैसा आपको लगा। तू अपनी खूबियाँ जो है ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग जो है अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग जो है न भैया प्रदीप सपने देखने, हाँ सपने देखने है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है, अपनी अंदर जुनून की चिंगारी भड़का जलाने के लिए लोग है न भैया प्रदीप। दोस्तों ये खास जो है प्यार की बात जो हम करते हैं इस कार्यक्रम में आज के ये जो है पल घड़ी आपके साथ जो बीत रहा है

कैसे करे और एहसास कैसे करे जाने, तो वही तो है एहसास करना, तो प्यार में जो है बातों से नहीं, लफ्जों से नहीं, हमारी और बेस्ट मैन से। झूठ भी यहाँ बोलना पड़ता है ना, सच भी छुपाना पड़ता है। जिंदगी जीने के लिए हर रास्ता अपनाना ही पड़ता है। शरीफ लोगों को जीने कहाँ देते हैं लोग, कभी कभी बुरा भी बन जाना पड़ता है। ये जिंदगी है साहेब, हाँ भैयो ये जिंदगी है, यहाँ दर्द छुपाकर भी मुस्कुराना पड़ता है ना। और दर्द छुपाकर मुस्कुराओ चलते हैं लोग, जो पूछे कैसे हो आप, तो कहना ही पड़ता है अच्छा है। हाँ, क्यों, क्योंकि आपको रिक्स कब कहाँ किसके देना है।

जबकि आज ये प्रोग्राम में मैं मधुर संगीत, प्यार भरा संगीत आपके लिए जो पेश कर रहा हूँ, तो यही आपसे जो है रिश्ता होता है प्यार के दो लोगों से ना, दो लोगों से, और हर कोई ये पता है, मालूम है, जानते हो आप भी किए हो प्यार, ये हो रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। हमारे मित्रों बेस्ट फ्रेंड से, अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है, और वहाँ शब्दों के बात नहीं, वहाँ इशहार जो करते हैं लोग, तो यूँ ही एहसास हो जाता है, खुद एहसास हो जाता है।

0: किशोर दा किशोर कुमार के आवाज में ये प्यार भरी मधुर संगीत जो आप सुनना चाहते हो तो यूं ही, और ये जो है मैंने आपके लिए और प्यार के साथ प्रस्तुत किए। पौधा होता है, फूल में ना, फूल के पेड़ जो होता है उसमें पौधे होते हैं, लेकिन पौधे के बाद फूल जो होता है, फूल तोड़ लो, टूटा हुआ फूल जो होते हैं खुशबू दे जाता है। हाँ, फूल सोचो, गुलाब के फूल आप तोड़े और तोड़ के सूंघे, खास करके उनकी खुशबू अत्यर उसमें जो होते हैं ना, तो टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाते हैं। हर शख्स का अपना अंदाज होता है ना, अरे किसी को अपना ही अपना अंदाज होते हैं। कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाते हैं दोस्तों। तो यह कार्यक्रम जो है आप ही के नाम और ये बातचीत होते हुए उनके साथ कुछ नगमे ना,
1: एल आइकन को प्रेस करें,
0: स्पेशल फुल हिट सेशन वाहन के माध्यम से।

तो हमारे प्रिय दोस्तों, पावन हिंदुस्तानी रेडियो आप ही स्टेशन देवता के आवाज जो है तारक नंबर 0 7 3 2 7 2 7 7 7 साथ हो आप और साथ दे रहे हो, आपको हृदय से धन्यवाद, तह दिल से शुक्रिया। अभी तक मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ जो आपके साथ दे रहा हूँ, और ये फाहुन आपके साथ 24 घंटे लगातार आपके साथ तो कभी नहीं छोड़ता है। जब भी अपना रेडियो को ऑन करेंगे तो यकीन मानो हमें ज़रूर से आप पाएंगे। आप क्यों रहे आप ही स्टेशन जनता के आवाज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 घंटे लगातार ये हिंदुस्तानी रेडियो आपकी सेवा करता है बादशाहों के बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में।

ये आप ही के लिए सब प्रस्तुत होता है और कार्यक्रम में अगला सा नंबर हम आपके लिए पेश करेंगे, लेकिन उनमें शेर शायरी मुझे बेहद पसंद है, आप को पसंद है ये बतला सकते हो। हमारी तार के नंबर 9035624940। कभी फुर्सत मिले तो सोचना ज़रूर वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था। प्रोग्राम में इस बार द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश, लाखों हजारों करोड़ों के दिल चुराने वाला मुकेश जी की आवाज में क्या सुनेंगे आप।

फाहुन यही है दोस्तों, और आप ये कार्यक्रम में ये नमूना सुने कि है सिद्दत तेरी इबादत में, है सिद्दत तेरी इबादत में तो मजहार को हिला के देखा, वरना दो जाम पी और मजहार को हिलते देखा। हमारी बेस्ट मैन से कार्यक्रम में

अब आपको यकीन आया ना, यही पर क्यों रहना आप, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। तो जरा से ये भी सुन लो कि कभी मैं अपनी हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है।

क्या मैं आपसे सच्ची कहना, आप आजमाते हो और इसी तरह से आप जहाँ पे चुने हो सही जगह है। उदास ना बैठो, फिजा तंग करेगी। उदास ना बैठो, फिजा तंग करेगी। गुजरे हुए लम्हों की सजा तंग करेगी। किसी को ना लाओ दिल के इतना करीब, क्योंकि उसके जाने के बाद उसकी हर अदा तंग करेगी। नॉन स्टॉप हिट सिलेक्शन आप ही की फेमस फाहुन के माध्यम से दोस्तों, तो यहाँ से पुराने दर्द भरी प्यार भरी नगमे और जो भी है इसमें से एक ये सुन लो जरा से।

क्या बात है हमारी प्रिय दोस्त, जो हम आपके साथ है नसीब में बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है, यकीन दिलाता है कि वो हमारा दिल है, यकीन दिलाता है कि वो हमारा दिल है, फिर ना जाने क्यों वक्त के साथ बदल जाता है।

ये दर्द भी क्या कमाल की चीज है, जब भी मिला अल्लाह से मिलने का मौका मिला। तो आगे के प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ से जरा से ये भी सुनो, गौर से सुनो, अच्छा लगता है शेर शायरी, इसी तरह से मैं आपसे बतलाता चलता हूँ और संगीत तो पेश होता है। मेरे आंखों में मत ढूंढा करो खुद को, पता है ना दिल में रहते हो धड़कन की तरह।

0: वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: ओढ़न मिट्टी बिछावन मिट्टी ओढ़न।
0: दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को 79 साल की उम्र में इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिलदरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानि खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानि पिता, दो बहुए पतो यानि सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानि क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानि आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सहूर का वफात हो गया है, जो ज़िंदगी में भी सुहानी ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और म्यूज़िक फॉर्मेट सी चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत का दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन ए नीर तो त्वेस्मिदक्स औद हाक वेख 28 दनहाक शहर में, और भी मैयत का दीदार आप कर सकते हैं मानदक 11 मई 3 तो 11 यूर मस्जिद यानि मस्की जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई का होनत 3 पर है। उसके बाद मैयत 12:30 बजे यानि हल्फ इन जनाजा पढ़ने के बाद हल्फ त्वेई न्यू एकन दोइनन कम्पर फुलिस्तरात के कब्रिस्तान में तज़ीन व तफ़ीन किया जाएगा। खबर को हम दोहरा रहे हैं, दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार 79 साल की उम्र में बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिलदरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानि खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानि पिता, दो बहुए यानि सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानि क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानि आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सत सहूर का वफात हो गया है, जो ज़िंदगी में नया ज़माना ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और सुहानी ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिकांत था और साथ ही साथ म्यूजिक फॉर्मेट से चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत से दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन देर 3 यूर तो फिर 3 यूर औद हाक वेख 28 दिन हाक में, और मैयत का दीदार भी आप कर सकते हैं सोमवार मानदक 11 मई को 10 से 11 बजे तक मस्जिद यानि मस्की जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई को होनत 3 पर है। उसके बाद 12:30 बजे यानि हलफिन जनाजा पढ़ने के बाद हलफ त्वेई न्यू एकन दैन कम्पर फुलिस्तरात में कब्रिस्तान में तजीद व तफ़ीन किया जाएगा।

मालूमात के लिए तार का नंबर दिया गया है 06-16-11-361 और एक तार और है 06-41-25-88-93। मैं दोहरा रहा हूँ 06-16-11-371।

of 06-41-25-88-93. Vaar hun Hindustani sabhi parivar Ram Lakhan aur rishtedar Abdul ko yahan se shok samvedna prakat kar rahe hain aur matam mein sharik hain. Sunne walon se nivedan hai aur guzarish hai ki ye khabar tak aur aage tak pahuncha dene ko. यहाँ तक था फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर रिश्तेदार अब्दुल का.

आरज़ू है के मेरी कब्रे हो मस्जिदी के करीब, बाद मरने की भी सुनता रहूं मैं जिक्र हबीब। आरज़ू है के मेरी कब्रे हो मस्जिद के करीब, आरज़ू है के मेरी कब्रे हो मस्जिद के करीब, बाद मरने

जब मुअज्जिन की अजानों से हो रहमत का नुज़ूल, बरसे तुर्बत पे मेरी गुलशन फिरदौस के फूल, रोज इस तरह चमकता रहे तुर्बत का नसीब, रोज इस तरह, हाँ रोज इस तरह चमकता।

जब मुअज्जिन कहे तकबीर बसत इस दुनिया मेरी तुरबत हो मेरे वास्ते एक जाए नमाज सबके आगे हो खुदा मैं रहूं रहमत के करीब सबके आगे सबके

मैं सियाकार गुनहगार, बुरे हैं आमाल।

या खुदा या खुदा, जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। मेम साहब सलाम।

यही तो है आप ही की स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम आप सुन रहे हो मेरे साथ मिलकर। मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ। इश्क का तो पता नहीं पर जो तुमसे है वो किसी से नहीं। दर्द भरा नंबर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, ये मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ। हम आप साथ मिलकर जो प्रोग्राम सुन रहे हैं कैसा लगता है आपको बताना है। हमारी तार को नंबर 9 6 6 2 2 6 4 यही है आप ही की रेडियो। खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला हन जाने में, ये दर्द भरा नगमा। और चल के सुनते हैं, जानते हो इसे, बताओ कैसा है।

चीजें ठीक हो जाते हैं, चीजें ठीक हो जाते हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते।

अल्लाह दिल से भुलाऊं कैसे, तेरी यादों को भला दिल से भुलाऊं कैसे। दिल तो है एक प्यार, नहीं मिलते तो सुनाते कैसे। मेरा मन मेरा तन मेरा जीवन, मेरा मन मेरा तन मेरा जीवन समाज की छाया है। मेरे पास कुछ भी नहीं अपना, मेरे पास कुछ भी नहीं अपना, जो भी है आप ही से पाया है। मैं कहां कुछ कर पाता, मैं कहां कुछ कर पाता, यदि आप सबका प्यार न मिलते। आपकी याद में रहकर बिगड़ी भी बन जाते हैं। ये जो समाज है स्वराज्य है हमारा, मैं रहूं ना रहूं तुम सब करते रहना सहारा। प्यारे समाज सेवकों, कुछ देना है तो वचन देना। आप वचन देंगे? बोलो। मेरे समाज सेवकों, कुछ देना है तो वचन देना। आप

0: समाज में लड़ाई झगड़ा बंद। बलोफ लीदास, बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है, बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है, वह आके भी गुजर जाती है। गम बहुत है प्यार भारी, गम बहुत है प्यार भारी है, और यही है जिंदगी हमारी। खेल का भी तो है अपना नशा, खेल का तो भी है अपना नशा, हमने बाजी जीत कर खुशी से हारी है। मिलो तो फूलों की तरह, बिछड़ो तो सुगंध की तरह। अंकुतलकार असब्लूमन एंड नेम ऑफ सैदा स्क्वेयर। धन्यवाद।
1: बेस्ट मेंसे ये छा अखंड विद्वान श्री पूज्य पंडित दाता दीन, ये शुभ संदेश जो जो समाज के सेवक है, अपना धर्म के प्रचार करता है, अपना कर्तव्य अपना धर्म निभाता है, और यही संदेश दिया कि ऐसा ही कुछ आप करते चलो और उसे से ज़रूर से आपके भी और समाज के भी कल्याण होगा।

तो ये मैं कह दूं आपसे कि आज नहीं तो कल उसे भी ये एहसास हो जाएगा कि नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र, फिक्र करने वाले हमारे साथियों।

तो अकेला था तो अकेला है ये और बोल था इस संगीत की हमारे साथ में। फिर भी जिंदगी में हम अकेले आए हैं ना, अकेले आए हैं, अकेले जी रहे हैं, अकेले फिर जाना है, कोई साथी नहीं। मिल जाता है साथी कुछ पल के लिए, कुछ घड़ी के लिए, और जीवन साथी कोई अपना ढूंढ लेता है, मिल जाता है, क्योंकि प्रकृति की नेम है ना। लोगों को झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों में बुराई नजर आते हैं ना, क्या बात है बतलाओ।

तो यही तो मैं इस वक्त अपनी और मित्र दोस्त से सवाल कर रहा हूँ भैया रजेश बदलू से, कि भैया रजेश दोस्त की कोई बात बुरा लगे तो खामोश हो जाओ, अगर वो दोस्त है तो उसे उस बात का दुख होगा, और अगर ना हुआ तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं। सही गलत मुझे मालूम नहीं, भैया रजेश बदलू मुझे बतलाएगा।

साथियों, संगीत आप ही के नाम ने, ये जिंदगी है, वक्त गुजरेगा, हम बिखर जाएंगे, कौन जाने हम किधर जाएंगे, हम दोस्ती की परछाइयां हैं। साथियों, जहां आप हुए तन्हा वहीं हम नजर आएंगे, तो यही ढूंढते रहना भैया, राजेश बदलू जी।

0: कहना चाहती हूँ, साथ जुड़े रहो और इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहो। आप जो फोन करते हो दमोदी को एक्स बदन के
1: इस कदर
0: हजूत में खुद है।

तो यूं ही आपसे ये बतलाता चलूं मैं कि तेरी मुस्कुराहट मेरी पहचान है, तेरी खुशी मेरी जान है, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी, बस इतना समझ ले कि तेरी दोस्ती ही मेरी शान है। क्यों?

प्यार भरा कोई दर्द भरा गीत गजल जिसको जो पसंद है हर एक को अपने अपने पसंद होता है ना हमारे साथियों और इसमें से

वाह मुकेश, द हार्ट रॉक ऑफ मिलियंस, माइकी मुकेश, हमारे साथियों जो दूसरों की बातें आकर आपको बताते हैं ना, वो आपकी बातें भी साथ ले जाते हैं, तो समझ लेना वो क्या करते हैं उसे।

तो जरा से मैं आपसे ये भी बतलाता चलूं, जितना बदल सकता था बदल लिया खुद को। हाँ, बदल लिया खुद को। अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदल ले।

से बढ़कर एक होते हैं ना, ये तो मुकेश जी या और हार्ट ऑफ मिलियन। हमारे साथियों, वक्त नहीं है किसी के पास, हाँ वक्त नहीं है किसी के पास, जब तक ना हो कोई मतलब खास। हमारी साथियों, क्या शिकायत करना उन लोगों से जिनके दिलों में एहसास ही ना हो, बतलाइए आप, करना चाहिए या नहीं, जानना चाहता हूँ जरूर से।

संगीत आपके लिए प्रस्तुति किया गया है और कार्यक्रम में, जबकि फिल्म का नाम माय लव मेरा प्यार, इसी फिल्म से निकाला हुआ गीत आप श्रवण किए। यूं ही कह दूं आपसे कि जिन्हें एहसास ना हो उसे गिले शिकवे करना बेकार की बात है।

और क्या ऐसा कुछ पर ये वक्त आपके जिंदगी में आया है हमारे साथियों, हमारे प्रिय मित्रों, नाराज उनसे हुआ जाता है जिन्हें आपकी नाराजगी की फिक्र हो, ना ऐसा ही बात है ना। और जरा से ये भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, गुनाह करके कहाँ छुपाऊंगे, ये जमीन आसमान सब उसी का है, तो बतलाइए, जवाब आप ही को देना है।

0: ये हाँ, ये सिलेक्शन और अभी आप ही के लिए चलाया गया ना। दिल खोल कर बुराई करो मेरी, दिल खोल कर बुराई करो मेरी, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते हमारे साथियों। और ये बात आप जाने, मैं जाने और कौन जाने। तो ये तरह से हम इस बार संगीत जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो इसमें से एक ये हो जाए।
1: क्यों पिछड़ने का मौसम आ गया।

waar de Waskalakar. Prachtig, hè? Madhure Sagit.

हाँ हमारे साथियों, यही तो बात है, जब कोई ख़ास इंसान नज़रअंदाज करना शुरू कर दे तो समझ लेना उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो गई है। आपको यकीन है ना? यूँ ही और बात जो है संगीत ये यहाँ पेश कर रहा हूँ, चला रहा हूँ मैं इस बार जो है नंबर आपके लिए चलाना चाहता हूँ, तो उसे पहले मैं यूँ ही कर दूँ। क्या बात है, नाराज हुए लोगों को इतने भी नाराज नहीं होना चाहिए कि मनाने वाले नाराज हो जाए, आप समझ लेना, हद से ज़्यादा ना ये बात होता है। और जबकि है ये पति पत्नी जो है, मैं अभी आपसे कहा ना खास जो है, और वो हिमेश रेशम मियाँ के साथ मिलकर और बहुत नगमे गाए हैं, और पति पत्नी जो है अरुणिता और पवनदीप, ये दोनों की नगमा जो है गीत संगीत जो गाए हैं और प्यार भरी मधुर संगीत जो है मुझे पसंद है और लोगों को जो पसंद है, अभी जो मैंने कहा आप जो फ़ोन किए, डंक वेल नोक स्केट के फॉर यू अटेंसी मुफ्रो

वाह रे वाह, ये कमाल है अरु नीता जी की। पवनदीप की अर्धांगनी घर के लक्ष्मी, उनकी

या मेरे साथियों और जमनर आप सुने, यही तो कहना चाहता हूँ आपसे, फर्क तुमसे बिछड़ कर फर्क सिर्फ इतना हुआ, तेरा गया कुछ नहीं, मेरा रहा कुछ भी नहीं।

0: तो यूं ही आपसे बतला दूं कि कभी कभी फिर कभी नहीं हो सकती मोहब्बत मुझे। वो शख्स भी एक ही था, ये दिल भी एक ही है, तो कैसे होगा यही बतलाइए आप।
1: क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी, कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

इसलिए कहना भी मेरा है कि दिल दिल चाहता है आज रोलू जी भर के, न जाने किस बात से नाराज हूँ खुद से।

और ये कहना मेरा है कि इस सारी संसार में, सारी जहान में, दुनिया में, और ये जो है सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। दुनिया का कोई भी शख्स मुझे वो खुशी नहीं दे सकता जो खुशी मुझे आपसे मिलती है। तो यूं ही आपको और ये बता दूं कि

तो साथियों प्रोग्राम में ये है और ये प्यार के बयान हम आपके सुनाए, ये जो सच्चाई है ना, ये हकीकत है और प्यार में जो होता भी रहता है। दिल के रिश्ते बड़े अजीब से बनाए हैं, सबसे ज़्यादा वही रोया जिसने ईमानदारी से निभाया है। हमारे साथियों ये बताना है आपसे, पवनदीप आपसे बेहतर से बताएंगे ये प्यार के बयान। प्यार करते लगो और जो करते हैं किए हैं वही जानते हैं, जिसके तो निभा गया है वो तो निभा गया लेकिन तो उसे जानते हैं। और आज के कार्यक्रम में इसी अवसर पर दोस्तों, तो यूं ही आपके लिए मैं आप ही के नाम

वाह वाह वाह हो रहा, कैसे मैं उनकी तारीफ करूं दोस्तों, ये तो है और महान कलाकार, हमारे सुनाम के कलाकार जो है उस्तादों के उस्ताद राम प्रसाद राम खिलौन, कमाल की मोहब्बत की तुमने जान जान कहते कहते अनजान बना दिया दोस्तों, यूं ही बातें कहते हैं और ये कार्यक्रम जो है आप ही के नाम आपको, और इस बार

शाबाश शाबाश कलाकार हमारी प्रिय और दोस्तों, खास कार्यक्रम में जो ये नंबर मैं आपके लिए प्रस्तुत किए, यूं ही आप लोगों ने जो तार किए और मैं अपनी तरफ से आपको हृदय से फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे हौसला मिल रहा है आप जो साथ देते हो ना, खुशी है और ये पल जो है आपके साथ मिल के और बीत जो रहा है। आप ही की हिट स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और साथ देने के लिए यूं ही खुश हूं मैं लोगों से बतला देना क्या है फाहुन, कौन है फाहुन, तार के नंबर बतला देना 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
जो है इंटरनेट के जरिए से पाहुन एफएम पिंटनल के जरिए से, या तो हॉलैंड में आप रहते हो तो डी अबी प्लस दप रेडियो है, डिजिटल रेडियो है दोस्तों। और टेक्नोलॉजी आज इतना दूर जबकि पहुंच गया है ना, तो जिन लोगों के जन्मदिन है आज, जन्मदिन के अवसर पर बहुत से बधाइयां शुभकामनाएं, और यही हम चाहते हैं आपके लंबी आयु हो, मनोकामना आपके पूर्ण हो, जीवन स्वस्थ और सफल रहे आपकी जो है

हर एक की ख्वाहिश तो यही रहता है ना, हमेशा साथ रहे। आयु तो होते हैं 100 वर्ष की, लेकिन ऐसा कार्य करते चलो कि हजारों साल तक आपको लोग जो है समाना जमाना याद करते रहे। हमारी दोस्तों वाहन पे आप चुने आप ही हिट स्टेशन म्यूजिक स्टेशन जो है, और हर एक कोई को एक सीखंद मोय दख कहते हुए फिर भी जन्मदिन पर बधाइयां शुभकामनाएं। अगर जन्मदिन है आपकी है, आज का दिन जो है खुशी के दिन, और जाकर मनाइए अपने परिवार के साथ, हिति प्रेमी ग्राम निवासी जहाँ तक हो सके, और जो है खुशी के दिन खुशी के पल आपस में बांटते चलो।

हॉलैंड पे रहते हो ना? हाँ हो रे, सोचो क्या से क्या हो गया है और यूं ही पैसा के बाद जब हो रहा है। तो शुरुआत में जब हम सुनाम छोड़ के आए हॉलैंड में, तो रिश्ता जो था है पारिवारिक रिश्ता जो है, कितना उसमें गर्मी था। आज क्या हो गया है, कुछ ठंडी पड़ गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन यही कहना है कि परिंदे और इंसान को आज़ाद छोड़ दो, परिंदे और या तो इंसान को आज़ाद छोड़ दो। लौट आया तो अपना, और नहीं आया तो समझना कि अपना वो कभी था ही नहीं। दोस्तों यूं ही बात करते हैं और संगीत हम आपके लिए जो पेश कर रहे हैं खास के कार्यक्रम में फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम और आप ही के नाम। क्या करूंगे अब, मेरे पास आकर यही सबक जो आपसे करता हूं, क्या करेंगे अब, मेरे पास आकर खो दिया है तुमने मुझे, बार बार बार बार आजमा कर। तो यूं ही ये सवाल आप ही से करता हूं और जो संगीत है के नाम आप ही के नाम।

क्या कहूँ मैं, और आपको क्या कहना, तारीफ करना ही पड़ेगा ना। ये यूं ही अनजान तो था जिंदगी में ना, इससे मैं एकदम से अनजान था। छोटी सी उम्र में ही दिल लगा बैठा थे हम दोस्तों, ये छोटी सी उम्र में दिल लगा बैठे थे हम। हमने क्या पता था, मुझे क्या पता था, नशा शराब का नहीं यार का भी होता है दोस्तों। आपसे ऐसा कुछ हुआ है बतला सकते हो, क्योंकि

तो यही तो है पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन। स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन तारक नंबर 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: तो ये शिक्षा भरी और नम्र अभी आप सुने तो अब उसे बात नहीं होगी, अब उसे बात नहीं होगी, पर अब बात उसी की होगी। और अब चाहे भगवान चाहे खुदा, तो ये चाहे छीन ले ये सांसें, पर ये जिंदगी तो नाम उसी की होगी। दोस्तों ये इतना गहरा प्यार आपस में होता ही रहता है ना, आपस में जिंदगी और जाकर हम जीते हैं। क्या हम चाहते नहीं जानते हैं कि भविष्य तो कम से क्या होने वाला है, कि आग दिल में लगी जब वो खफा हुए, महसूस हुआ तब जब वो जुदा हुए, करके वफा कुछ दे न सके वो, पर बहुत कुछ दे गए जब वो बेवफा हुए। हमारे प्रिय दोस्तों आप ही सही सन तार करो मन दो सही फन तक दरित्वे सशक्तवें तक सही फन तक
1: हरि फाहुन। दोस्तों हम क्या बतलाऊं आपसे, ये प्रोग्राम जो आपके नाम से पेश कर रहे हैं तो नगमे संगीत जो पेश कर रहे हैं चला रहे हैं यही सोचते हुए कि आपको पसंद आता हुआ होगा। और अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे जानेंगे, खुद अपने आप के लिए प्रोग्राम थोड़ा चला रहे हैं, आपको साथ है तो इसी कारण जो है और कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं कि हम सब मिलके और ख़ास करके इससे मज़ा ले हमारी मित्रों दोस्तों। और आज का दिन तारीख जानते हुए फिर भी और ब्लैफ तिखनित और मौसम जो है कि उस पर कैसे भरोसा करो, भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें समझ सके। दोस्तों जिंदगी में अब अगर किसी से आपको मुलाकात हो गया और किस्मत तकदीर से किसी से मुलाकात इस जिंदगी में फिर भी होता है तो भरोसा उस पे करो जो तुम्हारी तीन बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, कैसे आप मुस्कुरा रहे, क्यों आप मुस्कुरा रहे, ये बात। गुस्से के पीछे का प्यार, और तीसरा चुप रहने का ये पीछे की वजह, क्यों चुप हो गए। तो बातें और करते रहते हम आपसे, आप भी कुछ कहना चाहते हो इस प्रोग्राम में तो ज़रूर कह सकते हो। तो यूं ही आपसे बात कहते हुए और नंबर जो यहाँ मैंने आपके लिए चलाने को जा रहा हूँ स्पेशल, आप चुन है ना, आप चुन है और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे तो आप ही के लिए तो चला रहे हैं ये खास नंबर जो है स्पेशल फॉर यू। और बहुत ही प्यार के साथ बातचीत करते करते और आप से बताते हुए तार का नंबर अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए और हमेशा भी तार कर सकते हो। ये रेडियो पे हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ बतलाना है, कुछ परिवर्तन इसमें लाना है तो मैं बार बार हमेशा कहता हूँ आप बतला सकते हो। हमारे तार का नंबर जो है 9 आज रात्रि के प्रोग्राम में फिर से मैं आपसे कह दूँ और जो पहला प्यार होता है, हाँ दोस्तों, और उसमें अनजान होते हैं लोग कि प्यार क्या होता है, फिर भी जानते हैं सीखे माँ पिता से और फूदे में। अगर वो खुश है देखकर आंसू मेरी आंखों में, तो रब की कसम हम मुस्कुराना छोड़ देंगे, तड़पते रहेंगे उसे देखने को लेकिन उसकी तरफ नजरें उठाना छोड़ देंगे। दोस्तों आप सुने, ये पहला प्यार के बात है, जब आपको ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था, तजुर्बा प्यार में कहाँ होना चाहिए, लोग की ज़िंदगी और जाकर व्यतीत करते हैं अपनी ज़िंदगी जो तकदीर में लिखा होता है। तो श्रीमान जो है शिव चेतन इस संस्था फाहुन की और बहुत ज़ोर शोर से मशक्कत से और संघर्ष मेहनत श्रीमान कुमार घिराऊ भी खास करके चला रहे हैं और उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। रात के फाहुन पे आप चुने तो क्यों न मैं आपको ये सुनाऊँ। और जहाँ पर विद स्कूल पास्ट

0: छी छी छी, मुझे तो देख के शर्म आ रही।
1: वहां जाते शर्म नहीं आती?
0: वहां की और बात है, वो घर की औरतें नहीं, उनका तो काम ही यही है मर्द को रिझाना।
1: और घर की औरत का ये काम नहीं अपने मर्द को रिझाना? जो नहीं रिझाती वो मर्द खो बैठती है।
0: ये भी कोई बात है? छी छी
1: छी, तुम पर, तुम्हारे बूढ़े ख्यालों पर।
0: बूढ़े ख्याल? कौन कहता मेरे ख्याल बूढ़े हैं?
1: मैं कहती हूँ, तुम्हारी बीवी स्कोर सुंदर, तुम्हारे ख्याल भी बूढ़े हैं, तुम बुढ़े हो।
0: मैं बुढ़ा?
1: हाँ बुढ़ा।

तो हमारी प्रिय मित्र दोस्तों प्रोग्राम में और नगमे जो हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ से आप ये सुने ना कैसा लगा यूँ ही। और तार के नंबर में आपसे बतला चुका हूँ, नोल सोईफ तक दरी तुम ऐसा सकते तक सोईफ सोईफ तक फेमस स्टेशन फाहुन। मैं नहीं बना सकता वो रिश्ता कि एक चला गया तो दूसरा, और फिर वो गया तो कोई और सही। हाँ दोस्तों, ये रिश्ता होता ही ना, कोई कोई ऐसा ही रिश्ता बनाते हैं कि मैं नहीं बना सकता वो रिश्ता कि एक चला गया तो दूसरा, और फिर वो गया तो कोई और सही। दोस्तों मेरे लिए एक था और वही रहेगा, नहीं फर्क पड़ता मुझे वो मेरे साथ है या नहीं, बस वो दुआ है। हाँ दोस्तों, बस वो दुआ है और रहेगा। आप समझे जाने, और आप भी कुछ रहना चाहते हो जरूर, ये हो सकता है ना, साथ मिलकर खुशियां बांटे चाहते हो आप। तार का नंबर बताता चलता हूँ, आप जानते हो। और ये राजू फाहुन है, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, मुझे मेरा हंसता खेलता दिल वापस दे दो। ये बातचीत होते हैं और रहते गह दोस्तों, और बातचीत इसी तरह से मैं आपसे करते रहूँगा, कुछ नखमे चलाएंगे और शेर शायरी अजनबी भी जो साथ देते हैं। अजनबी जी हमेशा साथ नहीं देते जब उनके अवसर मौका मिलता है, तो वही तो बतलाती है। हाँ अजनबी जी कहना है कि एक लफ्ज मोहब्बत था दोस्तों, प्यार मोहब्बत था, एक लफ्ज मोहब्बत था, एक लफ्ज जुदाई था, एक लफ्ज मोहब्बत था, एक लफ्ज जुदाई था, एक वो ले गई और एक मुझे दे गई। खास करके अब क्या करें, वापस में ये सच्चाई से, और खास करके एर लखफर्देल्त, एक उनकी एक मेरी, तो दो मोहब्बत में दो लफ्ज था दोस्तों, एक जुदा, हाँ एक लफ्ज जुदाई था, हाँ एक मोहब्बत एक जुदाई, तो एक वो ले गई और एक मुझे दे गया। क्या चाहते हो आप, कौन वाली मोहब्बत या जुदाई, सोचो।

आते हैं चुपके से और चुपके से चला जाता है दोस्तों। इसी तरह से लोग जो है करते रहो और सुनते रहो, मुझे खुशी है। लेकिन और इशारा भी देते हो, उसे इशारा कर रहे तो खास करके कि आप प्रोग्राम सुनते हो। मुफरू बीबी साहिबा श्रीमती इर्सी कोदाबिक्स प्रोग्राम सुन रहे हैं, खुशी की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। साथ दे रही, इतला कर रहे, बतला रहे और उसी और महसूस होता है कि प्रोग्राम सुनते हैं दोस्तों, पता भी चल जाता है। और इसी तरह से लोग भी डरते हैं अपनी आवाज़ सुनाने को रेडियो पर, मुझे मालूम नहीं क्यों। डर न मत, वो ऊपर दरखात है वो ऊपर। उर्सी जी, ऐसा लोग होते हैं कुछ लोग इस जहान में ऐसे भी उर्सी मुफराओ, जो आपको भूल जाना बेहतर समझेंगे मगर आपकी गलती को नहीं। हाँ मुफराओ उर्सी, ये दुनिया में होता, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो जरूर कह सकते हो, ये मौका है ना, ये मौका एकदम से है। और जो खास करके हर एक कोई समय समय सुबह से जो कुछ कहना चाहते हैं रेडियो पे, हमारी रेडियो के बारे में, तो कह सकते हैं। और ये प्यार की बात होता है, प्यार तो कौन नहीं करता है, जहाँ में हर एक कोई अपनी अपनी तरह से प्यार करता है। कि प्यार करना हर किसी के बस की बात नहीं है उसी, प्यार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिगर चाहिए होता है खुशियाँ बर्बाद करने के लिए दोस्तों। आप जाने सुने समझे कि प्यार करना हर किसी के बस की बात नहीं, जिगर चाहिए होता है खुशियां बर्बाद करने के लिए दोस्तों। और प्रिय मित्रों, खास करके हमारे दोस्तों, प्रिय मित्रों, फिर से एक बार दैट स्पेशल नामस उर्सी कोदाबिक्स अल लोस्ट्रास इन एटलांट बेटलांट इंडिया अल्सापतालियों में यहाँ से सुना मलोस्टर तो इंग्लैंड लोस्टर्स अभी सुन रहे हैं, और कहाँ अमेरिका में भैया सुन रहे हैं प्रोग्राम। इस फिर हमेशा जो सुनते थे जैसे बहुत धीरे से आकर चले जाते हैं, बतलाकर और चले जाते हैं। डंक वेल, तहे दिल से शुक्रिया आपको। और चलते सुनते उर्सी क्या आपको सुनाना चाहती है। ये तो बादशाहों के बादशाह, सातों सुर के बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहेब, साथ उनकी है आशा भोसले। दोनों की आवाज़ों में

कोई फैसला मत कीजिए, बेशक उसमें बुराइयां होगी मगर खूबियां भी होगी उर्सी जी। सो इज इट नो? नेम इट ऑन, एक डैंग दैट इट सो इज की। और मनोरमा आप इंतजार कर रहे हो, आपकी ख्वाहिश जो है कोशिश हम करेंगे पूरा करने के लिए कि जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि रब तुम्हारी साथ है और हमेशा रहेगा। सुने आप, समझे जाने तो जानते रहना। इसी तरह से है कि जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि रब तुम्हारे साथ है और हमेशा हमेशा रहने वाला है। मनोरमा जी, हियर आई शुड लीव।

वाहरे वाह कलाकार। या दोस्तों मित्रों और तेरी खुश नसीब है मनोरमा, उन्हीं के नाम से ये प्रोग्राम में ये नंबर प्रस्तुत किया गया। और मनोरमा हमने कोशिश किया यही आपको खुश करने के लिए, आपके ख्वाहिश जो है वैस जो है पूरा करने के लिए वो नगमा जो आप सुनना चाहती थी। तो क्या सोचे आपने, तुमने सोचा बहुत मिल जाएगी चाहने वाले, तुमने सोचा बहुत मिल जाएगी चाहने वाले, मगर ये ना सोचा कि फर्क होता है चाहतों में भी न। आप ही बताइए, संध्या रंजीत सिंह आप ही के नाम से। और बहुत ही प्यार के साथ आप ही के स्टेशन हैं।

ओ मित्रों, और ये तो रेडियो है ना, रेडियो चलाते हैं और हमारी साथ आप जो दे रहे हो खुशियाँ ही खुशियाँ जो है पल हमारी ज़िंदगी में साथ मिल के हम बांट रहे हैं, खुशी की बात है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस बात के लिए। नंबर जो यहाँ

मेरा कहना यही है कि उम्मीद मत रखा करो, प्यार करो जी भर की, और जितना आप चाहो प्यार करो, बस उम्मीद मत रखो। तकलीफ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं प्यार नहीं, ये तकलीफ उम्मीदें देती है। दोस्तों, आप इस बात से वाकिफ है, बेंट इस मैं दिस्टेलिंग द मखुवेल आनखीफ। और आगे में चलकर इस बार नंबर स्पेशल आप ही के लिए, प्यार ही प्यार के साथ कहता हमारे भैया दिल प्रदामा दिन।

और जबकि मौरिन पूरन जी भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, मौरिन लाइटकंदाम की निवासी है, रहती है लाइटकंदाम में और कार्यक्रम सुन रही है। और मौरिन जी डंक वेल फूड भी आते हैं ऐसी, एक बार मुझे समझ में नहीं आता सांधिया के लिए आप सुने, आप रेडियो सुन रहे हो सांधिया, रंजीत सिंह के लिए मैंने एक नंबर चलाया, वो कहती कोई कुछ भी सुना नहीं, मैं क्या कहूँ, क्या अजीब, मुझे बहुत अजीब लगता है, फिर भी अभी चला देंगे सांधिया, नाराज मत होना। और ख़ास करके मांग कर बैठी थी, वादा किया था और चलाया भी, और वो नहीं सुनी, क्या मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं सुनी, नहीं सुन रही थी या उनकी गौर नहीं किए, फिर भी सांधिया रंजीत सिंह आपके लिए ज़रूर अब है, हम चला देंगे एक नगमा, और हो सकता है ख़ास करके जो है सोचते हुए कि आपको पसंद आएगा। ये भैया चांद हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं, हमेशा इतला भी करते हैं रघुनाथ जी भैया चांद, और जबकि मैं जानता हूँ क्योंकि बार बार हमेशा एक परिवार की तरह आप ही फाहुन के हो, और इसीलिए मैं जानता हूँ कि आपको महेंद्र कपूर के नगमे, ये कलाकार है मशहूर कलाकार ना उन दिनों और अब तक हमारी जहन में, और इसी तरह से है कि ये नगमा जो है मैं आपके लिए प्रस्तुत करने को जा रहा हूँ, आपके धर्मपत्नी हैं खीस जो भी प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं, ये लोग फाहुन के खास फैन हैं, तो आज के प्रोग्राम में आप ही के नाम से भैया और संध्या जरा से इंतज़ार करो, आपके लिए चला देंगे हम ज़रूर से। दर्द भी उन्हीं को मिलता है ना, दर्द जो है उन्हीं को भी मिलता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। दोस्तों आप समझे जाने मैं क्या कहूँ आपसे कि ये दर्द जो है, ये जो है ख़ास करके कोई सुनाता है बताता है, तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है जो दिल से प्यार करते हैं आपस में एक रिश्ता को निभाते हैं उसी को लोग, पता नहीं लोग मुझसे नाराज़ से क्यों होते हैं, जब भी उन्हें पता होता है कि मुझे मनाना नहीं आता, इसीलिए नाराज़ हो, नाराज़ मत होना करो। और प्रोग्राम में इस बार नंबर आगे के चलते हुए प्रोग्राम में भैया चांद रघुनाथ जी शीश भी प्रोग्राम सुने हैं ना, तो सुनो दिल खोल के और खुशियाँ आपस में बांटते रहना। आज के मौसम की तरह आशा जी और महेंद्र कपूर

मौसम तो प्रकृति है और प्रकृति को कैसे हम समझ पाएंगे। मौसम होलन के मौसम खास करके दोस्तों, यहाँ चार ऋतु है, फिर यार तेईद है, और यूँ ही आज का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, हवा चल रहा है, या बारिश हो रहा है, या बर्फबारी हो रहा है, हाखल हो रहा है, मुझे मालूम नहीं, और जो है कोले पड़ रहे हैं कि बहुत तकलीफ होती है ना, जब आपको समझने वाले ही आपको गलत समझने लग जाए दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है। जब आपको समझने वाले ही आपको गलत समझने लग जाए दोस्तों, प्रिय मित्रों, और ये खास नंबर जो हमने पेश किया भैया खास करके चांद रघुनाथ उनकी धर्म पत्नी की, और कार्यक्रम सुनते रहना, रात्रि है, दिन है, और हर पल 24 घंटे लगातार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, और जब आप ऑन करेंगे तो आप मिलेगा दोस्तों। और कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते दोस्तों, क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि उनकी बगैर हम नहीं रह सकते दोस्तों। तो जानते हैं ना यह होता है ज़िंदगी में कि कुछ लोग जो है हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि उनके बगैर हम नहीं रह सकते। तो ये होता है ज़िंदगी में, होता ही रहता है दोस्तों। संध्या चल के सुन लेते हैं, आपको मैं देर तक नहीं इंतज़ार करवाने वाला हूँ, और जबकि आप नहीं सुने तो यहाँ ज़रूर से सुन लेना, और फिर से एक बार यहाँ पर नंबर जो हम आपके लिए पेश करेंगे, आप ही के पसंद है, भैया कांति कुमार भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, भैया कांति शुभ रात्रि आपको, और फ़ोन किए धन्यवाद हृदय से आपको।

0: प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे।
1: हाँ हाँ
2: हाँ, खुशी की बात है ये और जो है यहाँ इस वक्त इस पल ये और जवाब सुनने के लिए हर कोई मुझे लोग जो है खास करके ज़िंदगी के जीने के तरीका बताता है। दोस्तों लोग मुझे ज़िंदगी जीने की तरीका बताते हैं और उन्हें कैसे समझाऊँ कि कुछ ख्वाब अधूरे है वरना जीना मुझे भी आता है। दोस्तों यूं ही बतलाता हूँ और यूं ही आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप कहते हो, लोग कहते हैं सपना टूट गया, ख्वाब टूट गया, यहाँ वहाँ, और अगर आप सोचो कहो आप ख्वाब देख रहे हो तो क्या होता है, नींद टूटता है, सपना कहाँ टूटता है, सपना नहीं टूटता है दोस्तों, नींद टूट जाता है। और कार्यक्रम में इस बार नंबर जो है आपके लिए

एक बार महेंद्र कपूर आशा भोसले साथ में गुनगुनाओ, साथ में मिलकर गाओ ना।

और यहाँ दो कलाकारें, खास करके जो है देखा जाए तो आशा भोसले और महेंद्र कपूर, महान कलाकार दोस्तों, पद्मश्री महेंद्र कपूर और आशा भोसले की दोनों की आवाज में खास नंबर को सुने। और जो है बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है दोस्तों, जो बीत गया उसे भूल जाओ, भूल जाना, फरखीत यही जिंदगी है। और जब तक हमारी जिंदगी की तजुर्बा होते हैं और जानते हैं कि क्या कैसे कौन सी करना चाहिए, तब तक जिंदगी तो बीत जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से और आज के कार्यक्रम में मैं अब तक आपके साथ दे रहा हूँ, खुशी की बात है आप हो और मुझे बेहद और खुशी है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ दे रहे हो। कह दूं आपसे जरा से कि तुझे छुए बिना भी तुझे महसूस किया है, तुझे छुए बिना भी तुझे महसूस किया है, मैंने तेरे एहसास से भी इश्क किया है। और कह दूं एक ही दम आपसे, समझा दो अपनी यादों को, समझा दो अपनी यादों को, वो बिन बुलाए पास आती है। तुम तो दूर रहकर सताते हो, हाँ तुम तो दूर रहकर सताते हो, नबी जी वो पास आकर रुलाती है। क्या कहूँ मैं आपसे, और ये कार्यक्रम जो है पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के आप जो सुन रहे हो, और बहुत ही प्यार के साथ ये जिंदगी है यारों,

Station, the music station. Fahun Hindustani Radio.

मुझे समझना तेरे बस की बात नहीं, मुझे समझना तेरे बस की बात नहीं, सोच बुलंद कर या फिर सोचना ही छोड़ दे। हमारी और बेस्ट सुनने वालों, ये कह दूं आपसे कि तेरे इश्क का जरूर था जो खुद को बर्बाद कर दिया, तेरे इश्क का जरूर था जो खुद को बर्बाद कर दिया, वरना कुछ लोग तो दीवाने हमारे भी थे। आपसे ये बतलाता चलूं या खास जो है यहाँ मैं आप ही के नाम ये पेश कर दूं। अगर आपको कोई

प्यार के नगमे ऐसे ही होते हैं। ये शब्दों है ना, एहसास की जरूरत है चाहत में। यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी तुम्हारी मेरी चाहत की सजा बन गई। कैसे बुलाऊं, कैसे भूलूं मैं तुम्हें एक पल के लिए, तुम्हारी यादें ही मेरे जीने की वजह बन गई है, तो क्या करें। संगीत है हमारी बेस्ट लोयसरार। चाहत के बाद जब होते हैं ना, चाहत में क्या कहे, उसमें जुदाई तो भी है, खुशी है, दर्द है, गम है। मिलना बिछड़ना यही तो जिंदगी कहते हैं।

प्यार के बाद जब होते हैं ना, तो ये कहते हैं ये रिश्ता निभाना ही पड़ता है। जब वादा करते हैं एक दूसरे जो प्यार ये कि जिंदगी में जरा सी जिंदगी है अरमान बहुत है, हमदर्द कोई नहीं।

इंसान बहुत है, दिल का दर्द सुनाऊं तो सुनाऊं किसको, दिल का दर्द सुनाऊं तो सुनाऊं किसको, जो दिल के करीब थे वो अनजान बहुत है।

बात कहते हैं, एक शेर सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आपके लिए गजल जो प्रस्तुत किया तो मैं ये कहता हूँ, आप भी जानते हैं अतर को ज़रूरत कब पड़ता है गुलाब को, और इसी तरह से शेर शायरी के साथ गजल भी चलता है ना। किसी शख्स को इतना प्यार दो, किसी शख्स को इतना प्यार दो कि कोई गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं, वो सिर्फ ज़रूरत की पुजारी है। मोहब्बत करने वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और ज़रूरतमंद को किसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, हमारी बेस्ट लोइस चलास। हंसाता था मुझको, रुलाता भी था दोस्तों, खैर वो कभी कभी मुझे भुला भी देता था। हाँ, ये होता ही रहता ना प्यार में, एक रिश्ता में ऐसा होता है। बेवफा तो था मगर अच्छा लगता था दिल को दोस्तों। कभी कभी बातें मोहब्बत की सुना भी देता था, थाम लेता था हाथ मेरा, कभी यूं ही खुद अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा भी लेता था। हाँ, छुड़ा भी लेता था। अजब धूप छांव से मिजाज था उसका, मोहब्बत भी करता था। एक पल अगले पल नजरों से गिरा भी देता था। ये रिश्ता ऐसा भी था मेरा रिश्ता, जो अपने रिश्ते के बारे में मैं कहता हूँ दोस्तों। और हमारी प्रिय बेस्ट लोस्टरार्स कार्यक्रम में इस बार नंबर जो हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, जब गजलें चलाता हूँ तो इस बार गज़ल जो है आपकी नैनों जो है आपकी नैना के बारे में यूँ ही ज़रा से मैं आपको सुना दूँ, अगर आपको इतराज़ ना हो, क्योंकि ये बात है आप ही से करता हूँ। आई शुड बिलीव, देख चल के सुनते हैं कि आपके आँखें के बारे में मैं यूँ ही अपने जहन में लाता हूँ। हाँ अजनबी जी,

तारीफ ही तारीफ हुस्न की, खूबसूरती की और नैनों आंखें की। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत में बह जाना गुनाह है कहते हैं, मोहब्बत में सब जायज है गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। मोहब्बत वो जायज है जिसमें पाकीजगी हो। कोई भी मोहब्बत माँ बाप की इज्जत और मान से बढ़कर नहीं होती। हमारी प्रिय और लोयसरार से बेस्ट मैं सर।

हमारे ये प्रोग्राम ये डुएट सॉन्ग आप ही के लिए प्रस्तुत किया गया बहुत ही प्यार के साथ। आज ये कार्यक्रम में जो है मोहब्बत करना, जैसे मैंने आपसे बताया, कोई गुनाह तो नहीं है दोस्तों, फिर भी लोग ये जानते हुए और जानबूझकर क्या करते हैं, वही चाहते हैं सब कोई, हर एक कोई तो चाहते हैं और जानते भी है, सोचते हैं कि इसमें सुकून खुशी में लगे, लेकिन जिसकी तकदीर में जिसकी किस्मत में जो भी लिखा हुआ होता है वही तो मिलता है दोस्तों। अगर किसी को और पीड़ा पहचाना हो, किसी को धोखा देकर दोस्तों, किसी को फीलिंग्स के साथ खेल कर फिर भी खुश रह लेते हो, तो आपके यही कहते हूँ डंक वेल, हृदय से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया मैं कहता हूँ। औरत के बारे में मशहूर है, औरत राज नहीं रख सकती, लेकिन हकीकत यह है अगर औरत को राज रखना ना आता तो कोई मर्द सर उठाकर ना जी सकता दोस्तों। इसमें यकीन करते हो नहीं करते हो आप जानो, और रेडियो पाहुन पे आप क्यों ना आप ही स्टेशन तार के नंबर दुल सोई फन तक दरी तुम्हें सचक तुम्हें तक सोई फन तक हमारे तार के नंबर नल सोई फन तक दरी तुम्हें सचक तुम्हें तक सोई फन तक आप अपना ख्याल रखना ना, क्यों रहना इसी रेडियो पर। कुछ परिवर्तन लाना है इस रेडियो के कार्यक्रम में, और खुद जो मैं अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करता हूं, मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूं। असु इट्स नीट लुक फेंट मख अल्टेट इन बेल बेस्ट लोचराज, बतला सकते हो क्या कौन परिवर्तन बट कैन फरांदरिंग वेल के फरांदरिंग एक आन कन मख ब्रेंगन, बोलने में तो उस पर परिवर्तन नहीं हो पाएगा क्योंकि जुबान से जो सब निकलता है वी ए सेल्फ बैंथ वच सेल्फ बैंथ या कहानी सेल्फ नीत फरंद्र इमितात सी लोगों करके और खास करके करते हैं ना, जैसे आपको मालूम है कितने लोग जो पद्मश्री मोहम्मद रफी साहेब की, मुकेश जी की, किशोर दा की नगमा कोशिश करते हैं गाने के लिए, फिर भी वो कभी वो नहीं हो पाएगा। माँ के ऐख इलेते खास करके कैन बार वी ए बैंक पहचान अपना खुद बनाइए,

तो यही कोशिश है मेरा कि आपको और खुश करे मनोरंजन के लिए आज के कार्यक्रम में ये मैं आपको सुना दूं। अगर आपको इतराज नहीं है, इतराज तो होगा तो बतलाना, अच्छा और अच्छा नहीं लगा और अच्छा लगा ये भी बतला सकते हो। असुविधा तुबेल और कोई भी कार्य करवाना है रेडियो के माध्यम से तो हमेशा आप करवा सकते हो दोस्तों। यही रेडियो पाहुने हम कोशिश ही करते हैं तौर तरीके से आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरी खबरें खास फरमाई से और जो भी होता है रेडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं और करते हैं। जैसे कि इश्तहार भी हुआ हमारी मित्रों, इस देश में प्रोग्राम सुने खास करके बड़ी तादाद में, अमस्टरडम में भी लोग कार्यक्रम सुनते हैं।

जीवन का रीत है ना, रस्में परंपरा। और इसी के सहारे हम जीते।

रस्में कस्में हमें निभाना ही चाहिए, यही दुनिया का रीत है दोस्तों। और प्यार मोहब्बत तो हमेशा से है, जब से सृष्टि है दुनिया है, और ख़ास करके ये लोग भी कहते चलते हैं एक दूजे को, तेरी नाम से मोहब्बत की है, तेरी एहसास से मोहब्बत की है। तुम साथ नहीं हो फिर भी तेरी याद से मोहब्बत की है, कभी तुमने भी याद किया ही होगा, हाँ कभी तुमने भी याद किया होगा। उन लम्हों से मोहम्मत की है दोस्तों, उन लम्हों से मोहम्मत की है, और तुमसे मिलने का ख्वाब से लगता है, तुमसे मिलने एक ख्वाब सा लगता है, मैंने उस ख्वाब से भी मोहब्बत की है दोस्तों। ये जो है प्यार मोहब्बत जो है, और रीत निभाओ। बनाए हो रिश्ता ना, खुद अपनी आपके

आवाज में क्या आपको सुनने को आया, इसलिए एक बाप ने क्या खूब कहा है, एक बाप एक पिता ने क्या खूब कहा है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा हुआ देखूं। हाँ, मुझे इतना फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा हुआ देखूं। बस मेरी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। दोस्तों, यही आप सुने ना, तो आपको दोनों के आशीर्वाद चाहिए। गौर से सुनो।

तो माँ बाप की जो है उनकी आशीर्वाद से एक जो परिवार जो है कायम रहता है और खुशी आपको मिलता है। लोग कह चुके और बतला चुके क्योंकि आजमाए हैं, क्यों इसीलिए ये बतलाए गए हैं हमारी ज़िंदगी। और जब खुशियाँ में मैं आप मिलकर बिताना चाहते परिवार के जो रिश्ते होते हैं, तो ये रिश्ते नाते हम बनाए हैं, फिर भी बन ही गया है, हम नहीं बनाए दोस्तों, उनके नाम दिया है, उस रिश्ते नाते तो बन जाते हैं। दुनिया में इतनी रश्मि क्यों है? प्यार अगर जिंदगी है तो इसमें कसमें क्यों है दोस्तों? आप ही बतलाइए, हमें बताता क्यों नहीं कोई ये राज? दिल अगर अपना है, दिल अगर अपना है तो ये किसी और के बस में क्यों है? मालूम नहीं अम्स्टरडम, रोटरडम और सुतरमेर, बतलाइए ये खास जो है रस्में वादे हम निभाते हैं और ये परंपरा या तो है हम बनाकर उसे निभाना चाहिए। सच्चाई से ज़िंदगी में सुकून ही सुकून मिलेगा।

यूं ही मैं आपसे कहता चलूं कि अपनी निगाहों से न देख खुद को, हीरा भी तुझको पत्थर लगेगा। सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, सब कहते हैं होंगे चांद का टुकड़ा है तू, मेरी नजर से देख चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। प्रिय और दोस्तों बेस्ट लॉयस्टर्स, भैया मून जसवीर पूरन की पसंद।

फिल्म के नाम है असली नकली। देवानंद साधना स्टारकास्ट फिल्म की। यार इस चोई फंतक की एक नंबर है।

हमारी खास करके जसवीर शाम पूरन की पसंद आप सुने, और हमारी दोस्तों, और जब हम जानते हैं आप भी जानते हो, इस बात से वाकिफ हो तो प्यार में और दर्द भी हो सकता है, आंसू भी मिल सकता है, लेकिन तो जान बूझ कर सब ये, फिर भी लोग ये गुनाह, क्या मैं इसे कहूँ, कौन सा शब्द इससे इसमें मैं काम में ला सकता हूँ, ये काम में ला सकता हूँ कि आपसे बतला सकूँ, आपको एहसास ये दिला सकूँ कि प्यार जो है करो या ना करो, आप जानो दोस्तों क्यों कि दुनिया में हर कोई अपने अपने तरह से प्यार करता है, कि रोते हुए आँखों में इंतज़ार होता है, ये रोते हुए आँखों में इंतज़ार होता है, ना चाहते हुए भी प्यार होता है, क्यों देखते हैं हम वो सपने, क्यों वो देखते हैं हम वो सपने, जिनके टूटने पर भी उसकी सच्ची होने, उनकी सच होने का इंतज़ार होता है दोस्तों। और ये मैं सच सोचता हूँ कि ये सब कुछ वाकिफ है, आप जानते हैं, फिर भी गुनाह करते हैं और करना ही चाहिए, आप इसकी फैसला आपको खुद ही करना पड़ेगा, सुने हो ज़रूर, क्योंकि क्या से क्या हो जाते हैं लोग, अपनी जान तक भी दे देते हैं।

और मैं अपना बात आप ऐसे ही कर रहा हूँ। कल भी मैंने एक ख्वाब देखा दोस्तों, और ये अपना ही बात आपसे कर रहा हूँ, आपसे बांटना चाहता हूँ कि बोले तो दिल में तू कि कल रात तेरी यादों में तस्वीर बना डाली, आप ही की तस्वीर बना डाली, इतनी अच्छी लगी कि गले से लगा डाली। दोस्तों तस्वीर जो बनाए आपकी तो इतना अच्छा लगा कि खास करके गले से लगा डाली। जब हम और ख़ास करके खौफ डर लगा, और जब हुआ खौफ कि चुरा न ले, कौन चुरा न ले, किसी ने, इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आंसू से मिटा डाली। दोस्तों ये बात हुआ और यह हादसा कल मुझसे जो हुआ है यूं ही आपसे बतलाया, एक देर आपके साथ मिलकर जो है ज़िंदगी से कभी कभी ये पूछते हैं प्यार मोहब्बत ज़िंदगी, और यही तो है हम आपस में मिलके ये बिताते हैं, तो सच्चाई से ज़िंदगी बिताते चलो। ज़िंदगी जो है ऐ ज़िंदगी थोड़ा वक्त उधार दे दे मुझे, मेरे सीने से मोहब्बत का ये बोझ उतार दे, मेरी माँ बाप को रखना तू खुश हमेशा, चाहे मेरी किस्मत में तू गम हजार दे। हमारी बेस्ट लव सराफ़,

यार मोहब्बत में जुदाई और मिलन तो होते ही रहते हैं ना, तो इसमें जो मिलता है खास के तकलीफ मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है। क्यों? तकलीफ मुझे भी होती है मगर ये बात हौसला देती है कि तुम रह सकते हो, तुम रह सकते हो मेरे बिना, तो मैं क्यों नहीं दोस्तों। यही मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ये बात बतलाता चलूँ, ये कार्यक्रम जो है आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ आज के ये जो है ये हम। तो यहाँ से ये मैं सुनाऊँ आपको, अच्छा लगेगा। योग सेफ जी सुनते हो आप?

तो आज ये प्रोग्राम में है बहुत ही प्यार के साथ ये आपको मैं सुनाएं, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो एक जरूर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और यहाँ जो है इस बार खुदा अल्लाह बहुत बड़ा है, इस्माइल आजाद कौआ।

0: मुझको तन्हा। ये सुन के इब्ने हैदर बोले ये अश्कु
1: पीकर जाता है कौन लेकर
0: बीमार को सफर में। ऐ मेरी बच्ची तुझको राहत मिलेगी घर में, चारों तरफ है सुगरा छाया।

तो दोस्तों मानो जानो और कोशिश करो अपनी मजहब जो मानते हो उसी राह पे चलने के लिए, क्योंकि मैं अपना बात जो बतलाता चलता हूँ आपको कि सच्चा प्यार तो ना मिला, सच्चा प्यार तो ना मिला। हाँ दोस्तों सच्चा प्यार तो ना मिला लेकिन झूठे प्यार की पहचान हो गई है, अब जो उसकी और तजुर्बा हो गया है। तो यूं ही आपके साथ

और मित्रों जो है वो कौन औरत है वो जो सबसे पहले जन्नत जाएगी, यही बोल था। और इस कव्वाली का मेरा कहना यह है, नसीब के खेल भी अजीब होते हैं, नसीब किस्मत जो होते हैं ना, नसीब के खेल भी अजीब होते हैं। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं। हमारी और बेस्ट लव स्टार्स आप ही के हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन पा होन हिंदुस्तानी रेडियो टेलीफोन नोल सोईफन तक दरी तो ऐसा सक्टमेंट तक सोईफन सोईफन तक बाबा बल्लेश्वर।

बाबा बल्लेश्वर हमारी प्रिय मित्रों और दोस्तों पाहुन आप ही के स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन और ये कार्यक्रम आप ही के नाम प्रस्तुत होता है। मैं आपका सेवक श्याम पूरन अभी आपके साथ जो दे रहा हूँ यही सोचते हुए कि ये कार्यक्रम जो हमारी प्रिया प्रदीप के था मैं अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करता हूँ और आप अपने विचार से आपको पसंद आता हुआ होगा दोस्तों जो भोजपुरी हमारी जो है। बलेश्वर जी बाबा जैसे मैं देख रहा हूँ भैया अपना में जो है लाइव रिकॉर्डिंग है उतना अच्छा नहीं तो एक दूसरा ऐसा ही नंबर जो है और भोजपुरी के मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ क्योंकि भोजपुरी के और वक्त है समय है ना। वही शख्स वही कला

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, चाहे सुरिनाम में रहोगे या जहां भी रहोगे, तेरे धड़कन से पहचान लूंगा अलका याग्निक कुमार शानू का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग थे। और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

तो दोस्तों यारे तुम बदल न जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था। तलाश के बाद में हम जाते हैं, मूवी का नाम है राजा नीघंटीन 105। नीघंट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी, और ये गीत है

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है।

तेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जो तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानू राजेंद्र कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म है, और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरवानू अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं और ये है, सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मौफी के नाम था हीरो नंबर वन फन्ने 1900 एंड सी फन 900। और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

तुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों, और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है, और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग सुपरहिट फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकी लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग। छोटी सी उम्र में और नैती जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत ही छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बीत जाएगा और 17 बस बांध में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: कौन है?
1: आशिक।
0: इश्क करता हूँ आशिक, मेरा नाम है ऐश करना, मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदत एंजसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों, अनहिट फिल्म जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

0: आए जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट के
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त नई खतीन 165 का।

हम जब सिमट के आँख और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला जोंग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

और हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पद्माश्री मोहम्मद रफी और नायकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई है और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट इज हील मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे हो हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श नहीं खती हूँ, उसी वन शस्त्र के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की ओर। आशा जी मूवी का नाम है पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है और आप जानते हैं रफ़ी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. We are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Cosette will give you an exciting cabaret number.